मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 7वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 28 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है और इस सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।

0: प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना।

आज ईद उल जुहा पर्व है, तो इस उपलक्ष्य में आप सभी को सुनवाते हैं ये भजन।

श्रोता अभी सुन रहे थे मोहम्मद अजीज ए हरिहरन, पुरुषोत्तम दास, अनूप जलोटा और प्रीति सेठ के स्वरों में भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम अर्चना अब यहीं पर संपन्न होता है।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। मुख्य स्वर है रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर के।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते

बेच रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का और युगल स्वर रविंद्र सांठे और श्रीकांत पारगांवकर के। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए चिंतन में लक्ष्य प्राप्ति पर श्री कृष्ण शरद से विचार।
1: समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग सर्वोपरि है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जीवन की अवधि अल्प है, पर आत्मा अमर और अनंत है। मृत्यु अनिवार्य सत्य है, जो जन्मा है मरेगा भी। इसलिए हमें अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करके उसकी प्राप्ति की दिशा में निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए, भले ही हमें इस कार्य हेतु अपने जीवन का उत्सर्ग करना पड़े। यही हमारा निश्चय हो। व्यर्थ के कार्यों में समय गंवाना मूर्खता नहीं तो क्या है? अपने निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि हेतु हमें कर्ता के अहंग से परे सुख की कल्पना का मोह छोड़ फल की आसक्ति का परित्याग कर इहलोक अथवा परलोक में सुख भोग की कल्पना से दूर, धन यश संतान की तृष्णा से परे रहकर कार्य करना होगा। अन्यथा वृथा सुख की अनुसंधान की चेष्टा में मानव जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। हमारे समाज में अनेक दोष हैं और ये हैं बुराइयां जो सभी जगह पर हैं।

0: ये बुराइयां पुराने बातरों की तरह हैं, यदि उसे पैर से हटाओ तो सिर में चला जाएगा, वहां से हटाओ तो दूसरी जगह चला जाएगा। उसे शरीर से पूर्णतया हटाने के लिए चिकित्सा के साथ साथ नियमित आहार विहार भी परम आवश्यक है। ठीक वैसे ही समाज के हित साधन के लिए कठिन परिश्रम, शांत और संयत स्वभाव, आत्मबल, आंधी तूफान में न टूटने वाला मनोबल होना चाहिए। इस तरह समाज के कल्याण की भावना के साथ हर एक आदमी के दरवाजे तक निस्वार्थ भाव से पहुंचना होगा। हो सकता है प्रारंभ में सफलता के अच्छे परिणाम न मिलें, अतः साहस और धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मनुष्य में विश्वास रखना चाहिए। यदि उसमें दोष हैं और वह गलतियां करता है तो यह जान लेना अपेक्षित है कि वह यह त्रुटियां अपने यथार्थ स्वभाव के कारण नहीं करता, वरन उच्चतर आदर्शों के अभाव में वैसा करता है। यदि कोई सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता तो मिथ्या को दूर करने का यही उपाय है कि उसे सत्य का ज्ञान कराया जाए। लोगों से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जो कुछ तुम कर रहे हो वह खराब है, ठीक नहीं, वरन जो कुछ अच्छा है वह सामने रख दो, फिर देखेंगे कि वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते हैं। मनुष्य मात्र में जो ईश्वरीय शक्ति है वह जागृत हो जाती है। जो उत्तम है, महिमामय है, उसे ग्रहण करने के लिए हाथ फैला देती है। यही शक्ति भले ही विष्णु, शिव, गणेश या अन्य किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, सगुण या निर्गुण या साकार हो या निराकार रूप में उपासना की जाती हो, वो अनंत प्रेम शक्ति के साथ हमें प्रवेश करे, शुभाशीर्वादों की हम पर वर्षा करे, हमें एक दूसरे को समझने की सामर्थ्य दे, जिससे हम यथार्थ प्रेम के साथ, सत्य के प्रति तीव्र अनुराग के साथ एक दूसरे के हित के लिए कार्य कर सकें, जिससे सामाजिक पुनर्निर्माण के ये महत्वपूर्ण कार्य में हमारे अंदर अपने व्यक्तिगत नाम, यश, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत बढ़पन की वासना के अंकुर न फूटें और बहुपन की वासना के अंकुर हमारे भीतर से फूटें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में जो संदेश दिया गया है उसमें कर्म योग को श्रेष्ठ माना है। कर्म करना मानव का दायित्व है। फल की आकांक्षा मनुष्य की अनेक चिंताओं के घेरे में डालने वाली एक वस्तु है। फल की आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है। मोह का मकड़जाल इस तरह फैल जाता है कि उससे निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। गीता के कर्मण्येवाधिकार रस्ते के सिद्धांत से प्रमाद का जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे कवि बिहारी के इस दोहे से समझा जा सकता है। को न फस्यो इह जाल में कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझत चाह तो त्यों त्यों उरझत जात।
1: अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य प्राप्ति विषय पर श्री कृष्ण शरद से विचार कार्यक्रम चिंतन में।

श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण और आपने ट्यून किया है एफएम 102 और एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही साथ दूर दराज दुनिया के हर कोने में हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप के जरिए। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको जानकारी देते हैं हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आज सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज की चर्चा का विषय रहेगा गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें, जरूरी इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर ओशिमा विजय हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सुनिएगा सुबह 8:15 से 9 बजे तक। फिल्म संगीत इस सभा में आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर और 9:00

10 मिनट पर पुनः लेकर हाजिर होंगे। बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 9:30 पर। आज बहनों के लिए चर्चा का विषय रहेगा विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। साथ ही साथ श्री भागीरथ शर्मा से की गई भेंट वार्ता आपको सुनवाई जाएगी। विषय रहेगा किलकारी, गर्भावस्था एवं माँ बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य जानकारियों के संबंध में ये भेंट वार्ता होगी। और एक और जानकारी का विषय रहेगा बहनों के लिए, गर्मी के मौसम में निर्जलीकरण से बचें।

0: श्रोता सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जुड़े रहेंगे विविध भारती सेवा के साथ और दोपहर 12 बजे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपको सुनवाएंगे। उसके बाद पुनः आप विविध भारती सेवा के आनंद लेंगे। हमारे केंद्र से शाम 5 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में संवाद का विषय रहेगा स्मार्ट दिखने के चक्कर में मूर्ख ना दिखें। साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप सिंह गौड़ से एक वार्ता सुनिएगा, विद्यार्थी सफल कैसे हों, इस विषय पर। नॉलेज कॉर्नर में आज चर्चा होगी वीर सावरकर जयंती पर, हमारे त्यौहार। इस सेगमेंट में आज बात होगी ईद उल अजहा की। रोजगार सूचनाएं और खेल गतिविधियां भी होंगी युवाओं के लिए। किसानों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे सुनिएगा। चर्चा का विषय रहेगा जल संरक्षण। एक भेंट वार्ता सुनिएगा, खेती को लाभकारी बनाने में कृषक अनुभव। और वार्ताकार होंगे श्री ओम प्रकाश शर्मा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। चित्रपट संगीत रात 8 बजे और 7:30 बजे सुनिएगा माटी के स्वर, राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम। फिल्म संगीत बातों बातों में आपके लिए लेकर आएंगे रात 9 बजे और सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। और अब से कुछ ही देर बाद होगा कार्यक्रम नमस्कार कोटा। और अब संस्कृत समाचारों के लिए रुख करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुम्, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौरयोजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ अनुशासनस्य

0: राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चम् औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोयम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीये सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। मीडियम वेव 212.31 मीटर और FM 102.103.6 MHz और साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

मैंने कहीं पढ़ा था कि रिश्ते आवाज देकर नहीं चलते, कदम मिलाकर चलते हैं, धीरे बिना शोर के। कभी एक रुकता है तो दूसरा वजह नहीं पूछता, बस चाल थोड़ी धीमी कर लेता है। और निभाना शायद यही होता है, साथ रहने की जिद नहीं बल्कि साथ चलने की आदत। कितनी सही और दिल छू लेने वाली बात है। पर वहीं आपके और हमारे रिश्ते की बात करें साथियों, तो आपका और हमारा रिश्ता तो आवाज़ का ही रिश्ता है। जी हाँ, हम यहाँ बोलते हैं और आप हमें अपने रेडियो और मोबाइल पर सुनते हैं, और आपको हम बिना बोले ही सुन लेते हैं। तो बहुत ही अद्भुत और निराला रिश्ता है आपका और हमारा, और इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए शुरू हो चुका है आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है नमस्कार कोटा। स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। मैं हूं आज आपके साथ सीमा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जब किसी

कंपटीशन में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है ना, तब सबसे पहले बारी आती है तीसरे नंबर की। गौर से सुनिएगा, जब किसी कंपटीशन में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तब सबसे पहले बारी आती है तीसरे नंबर की, फिर आती है दूसरे नंबर की, और आखिर में आती है बारी उनकी जो नंबर वन आए हैं, जो विनर होते हैं, विजेता होते हैं, जो जीतते हैं। और ये सेम चीज़ हमारी लाइफ में होती है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब तक मेरी बारी नहीं आई है, दुनिया की क्या सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही होनी होती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी बारी कब आएगी, मेरा टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा। तो उन्हें इस बात से हम यही समझाना चाहते हैं कि जब भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो नंबर वन की बारी सबसे आखिर में आते हैं। जो जीतता है, जो जीतने वाला होता है, उसको टाइम लगता है भाई, उसका नाम लास्ट में अनाउंस होता है। तो भरोसा रखिए अपने कर्मों पर और ईश्वर पर, क्योंकि शायद आप वो व्यक्ति हो जो विजेता हो, जिसका नाम अब आने वाला हो, जिसका टाइम अब आ गया हो।

जी हाँ दोस्तों, आने वाला पल आने वाला है और जाने वाला पल जाने वाला है। तो हमारे पास क्या है? बस यही पल है जो आपका और हमारा साथ बना हुआ है। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर श्रोता सुन रहे हैं अपने दिलों की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और हिंदुत्व विचारधारा के जनक, नाम विनायक दामोदर सावरकर। वीर के नाम से प्रसिद्ध विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में इंडिया हाउस से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और सन 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। आपको बताना चाहेंगे कि सावरकर वो पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 आजीवन कारावास, जो कि 50 वर्ष की हुआ करती है, की सजा सुनाई थी और उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते हैं, वहाँ भेजा गया था। उन्होंने जेल में रहते हुए हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू नामक किताब लिखी, जिसने हिंदू राष्ट्रवादी की राजनीतिक विचारधारा को आकार दिया। सेलुलर जेल में कठोर यातनाओं के चलते उन्होंने कई दया याचिकाएं, मर्सी पिटिशन भेजी थी, जिसे लेकर इतिहास और राजनीति में उनकी काफ़ी आलोचनाएं भी की गई थी। समाज सुधार की दिशा में बात करें तो सन 1924 में रिहाई के बाद उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और अंतरजातीय भोज व मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई सन 1883 को ग्राम भागुर, जिला नासिक, मुंबई प्रांत में हुआ था। आज उनकी जयंती है, इन्हें हम वीर सावरकर नाम से भी जानते हैं। सावरकर की मृत्यु मुंबई में उनके निवास स्थान सावरकर सदन में हुई थी। 1 फरवरी सन 1966 से उन्होंने दवा और भोजन का पूर्णतया त्याग कर दिया था। 24 दिनों के उपवास के बाद 26 फरवरी सन 1966 की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली और इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उन्हें हमारा सादर नमन, सादर वंदन, सादर श्रद्धांजलि।

और श्रोताओं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक और विशेष व्यक्तित्व की। नाम है एनटी रामाराव। एनटी रामाराव एक दिग्गज भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, फिल्म

निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म संपादक और एक राजनेता थे। वे 4 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन रहे। उनके जीवन पर थोड़ी रोशनी डालें तो उनका पूरा नाम नंदामुरी तारका रामाराव था। उनका जन्म 28 मई सन 1923 को हुआ था। आज उनकी भी जयंती है। फिल्मी करियर में उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम किया और 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें फिल्मों में पौराणिक किरदारों, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की भूमिका निभाने के लिए अत्यधिक लोकप्रियता मिली। वहीं अगर एनटी रामाराव के राजनीतिक सफर की बात करें तो सन 1982 में वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वे सन 1983 से सन 1995 के बीच कुल 4 कार्यकालों तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अपने प्रांत के लिए कई विकास कार्य किए। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सन 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर एक तारीख वो आई, 18 जनवरी सन 1996। इस तारीख को हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से हमने ऐसी महान विभूति को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एनटी रामाराव को हमारा वंदन, हमारा प्रणाम।

लीजिए अब सुनिए कुछ जानकारियाँ। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कोटा शहर का तापमान। अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए एक जानकारी लाए हैं। राजस्व मंडल राजस्थान में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के 2 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इच्छुक अधिवक्ता 30 जून तक कार्यालय निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या डाक से जमा करा सकेंगे।

KEDL ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार को भी अपने सभी बिल संग्रहण केंद्र खुले रखने का निर्णय लिया है। KEDL के कमर्शियल हेड ने बताया कि शहर के सभी कैश काउंटर सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेंगे। उपखंड के उपभोक्ता KEDL के किसी भी बिल संग्रहण केंद्र पर जाकर बिजली बिल जमा करा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता बिल पर अंकित QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी भुगतान कर सकते हैं। KEDL ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा कर विलंब शुल्क से बचने की अपील की है। तो जिन जिन के बिजली के बिल भरने बाकी हैं, वे इस सुविधा का फायदा उठाएं।

श्रोता सुन रहे हैं अपने दिलों की सुरीली धड़कन आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल प्रोग्राम है नमस्कार कोटा। गर्मी का मौसम और स्वच्छता, ये इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। स्वच्छता हमारे अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। साफ सफाई रखने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियों से बचाव भी होता है। रोजाना नहाना, हाथों को साबुन से धोना, साफ कपड़े पहनना अच्छी स्वच्छता के मुख्य भाग हैं। स्वच्छ व्यक्ति न केवल अच्छा दिखता है बल्कि खुद स्वस्थ रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखता है। स्वच्छ रहने की आदत हमें कई तरह के छोटे मोटे इन्फेक्शंस से सुरक्षित रखती है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे व्यक्तित्व में निखार और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करती है। अब बात आती है मौसम के हिसाब से, तो मौसम के हिसाब से भी हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग व्यक्तिगत देखभाल करनी होती है। अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में हमें हमारी स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि पसीना, धूल और गर्मी के कारण होने वाले इन्फेक्शन या संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रोज़ाना नहाना, साफ और हल्के और सूती कपड़े पहनना, दिन में कई बार हाथ पैर मुंह धोना, शरीर को सूखा रखना और स्वच्छ रखना होता है। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी होता है और भोजन ताज़ा ही करना है। पसीने के कारण शरीर से दुर्गंध नहीं आए इसके लिए समय समय पर चेहरा और हाथ पैर धोते रहें। गीले कपड़े ज़्यादा देर तक नहीं पहनने,

क्योंकि इससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती है, उनको होने का या बढ़ने का खतरा बना रहता है। बाहर से घर आते ही पानी न पिए, थोड़ा रुके फिर पानी पिए, ताकि तन के साथ साथ मन भी स्वच्छ और स्वस्थ रहे। छोटी छोटी स्वच्छ आदतें गर्मियों में शरीर को स्वस्थ और ताजगी भरा और ऊर्जावान बनाए रखता है।

0: और जब बात हुई है स्वच्छता की, व्यक्तिगत स्वच्छता की, तो पर्यावरण की स्वच्छता की बात हम ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्यावरण केवल हमारे आसपास का वातावरण नहीं बल्कि जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल, हरे भरे पेड़ और जीव जंतु मिलकर इस धरती को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने प्रकृति के अस्तित्व को अब खतरे में डाल दिया है। यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और पानी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। एक छोटा सा पौधा लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना भी पर्यावरण संरक्षण की बड़ी शुरुआत हो सकती है। प्रकृति हमें जीवन देती है, इसलिए उसकी रक्षा करना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। जब धरती हरी भरी रहेगी तभी मानव जीवन खुशहाल और सुरक्षित रह पाएगा। तो इस बात पर आप विचार करें और पर्यावरण संरक्षण के आपसे जो कार्य बन पड़ते हैं वो ज़रूर करें।
1: आवाज़ें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई हैं।

0: होगा।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

और श्रोताओं, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आप सभी को शुभकामना देना चाहेंगे ईद उल जुहा की। जी हाँ, आज है ईद। सुबह 8 बजे ईदगाह में आज सभी जगह नमाज अदा की जाएगी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व होता है। ईद उल जुहा बकरीद या ईद उल जुहा अजहा भी इसे कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। ये त्यौहार त्याग, आस्था, प्रेम और इंसानियत का संदेश देता है। ये त्यौहार हमें इंसानियत, दया, भाईचारे और ज़रूरतमंदों की मदद करने की सीख देता है। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में ये त्यौहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसे प्रेम, शांति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। और जैसा कि हमने आपसे कहा, इस दिन दान पुण्य करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का बड़ा महत्व है, तो आप सभी इसे शांतिपूर्वक, प्रेम से त्यौहार मनाएं और इस त्यौहार की आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार कोटा को समाप्त करने का समय हो चला है, तो चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे, अपना खूब ख्याल रखें और गर्मी बहुत तेज़ है तो इससे बचें, पर्यावरण सुरक्षित रखें, अपनी खुद की स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुश रहें और बस खुश रहें और सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब अनुमति दीजिए अपनी साथी सीमा को, आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा जी ने और प्रस्तुति राजेश महावर जी की। नमस्कार कोटा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 7:30 हुए हैं, समय है फिल्म संगीत का। तो बिना समय गवाए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत फिल्म घर से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर हैं, गीतकार गुलजार और संगीतकार है आर डी बर्मन।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर, और अगला गीत आपके लिए लाए हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा। इस गीत को धुन दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम एक नज़र।

0: मान रहे उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हसीना मान जाएगी, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपके लिए लाए हैं। युगल गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर, गीतकार है अख्तर रुमानी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान।

0: Venom. पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोता फिल्म संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाएंगे, उससे पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज प्रातः 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें, जरूरी इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर ओशिमा विजय हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, तो प्रसारण के दौरान हमारे स्टूडियो के नंबरों पर फ़ोन करें और डॉक्टर साहब से सीधी बात करें। हमारे स्टूडियो का नंबर आपको बता देते हैं 2941142, और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 ज़रूर लगाएं। तो सुनना ना भूलिएगा आज सुबह 8:15 से 9 तक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और श्रोताओं, इस सूचना के बाद अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो हमने लिया है फिल्म आया सावन झूमके से। युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर, और कार्यक्रम में आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे, सुबह 8:15 पर सुनना ना भूलिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज चर्चा होगी गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें, जरूरी इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड इस विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर ओशिमा विजय। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें। पहले कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744 और उसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर 2941142। तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुबह 8:15 से 9 बजे तक। और अब बढ़ते हैं गीत की ओर, फिल्म का नाम आसपास, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस युगल गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन वेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6

0: ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर, पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग।

0: आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और एफएम 102 और 103.6 मेगा हर्ट्स पर। और साथ ही साथ आप हमारा प्रसारण दूर दराज सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर,
3: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 88 शक्तिनगर दशहरा मैदान कोटा।
4: कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा। कोटा आई हॉस्पिटल जहां बिना दर्द, बिना टांके और बिना पट्टी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन और मुड़ने वाले लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। कोटा आई हॉस्पिटल के रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित पंजाबी द्वारा रेटिना से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार और विश्व की सर्वोत्तम एलकॉन कॉन्स्टिलेशन मशीन द्वारा सर्जरी की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल में हाड़ौती की प्रथम और विश्व की सर्वश्रेष्ठ एलकॉन वेव लाइट EX500 लेसिक लेजर मशीन द्वारा चश्मा हटाने की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल राजस्थान राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नेत्र चिकित्सा सुविधा के बिल पुनर्भरण हेतु अनुमोदित है। कोटा आई हॉस्पिटल जहां एक छत के नीचे आंखों की संपूर्ण जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध। 1987 से आपकी सेवा में समर्पित अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त संस्थान कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। मैं हूं आपके साथ आपके साथी सीमा और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सजीव फोन इन प्रोग्राम है, हेलो डॉक्टर इसका नाम। आज के इस विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें, जरूरी इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड। ये रहेगा आज का विषय। गर्भावस्था केवल एक महिला ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान समय समय पर होने वाली जांचें माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की सही जानकारी देती है और संभावित समस्याओं को समय रहते पहचानने में हमारी मदद करती है। तो इन्हीं संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम आज इस कार्यक्रम में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं डॉक्टर उषिमा विजय जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
2: और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके हालचाल। वैसे आप एकदम खुश मिजाज नजर आ रही हैं, तो हमारे श्रोताओं को आपके हालचाल बताएं, फिर हम प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं।
5: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आज जो मैंने टॉपिक चुना है, इसीलिए चुना है क्योंकि बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं और जो दूर दराज के लोग हैं, यूजुअली रेगुलर चेकअप कराने के लिए नहीं आ पाते हैं डॉक्टर के पास। तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए ताकि माँ और बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे।
2: जी जी जी,
5: आज इसी पे बात करेंगे।
2: जी जी, तो डॉक्टर साहब, अब हम सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें करवाना क्यों जरूरी होता है।
5: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान हम लोग जो बोलते हैं, चार अपनी मिनिमम विजिट्स होनी चाहिए। चार विजिट, जैसे ही एक बार प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो उस समय एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए अपन को, ताकि जो दवाइयां शुरू करें अपन वो स्टार्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट विजिट होती है जो 20 वीक्स पे अपन बोलते हैं, 18 से 20 हफ्ते पे। वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, उसमें इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी, इंपॉर्टेंट जांचें होती हैं। तीसरी जो विजिट है वो 32 वीक्स के लगभग होती है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट होते हैं उस समय। और चौथी जो लास्ट में एक बार वापस विजिट करनी चाहिए डॉक्टर को, ताकि जच्चा बच्चे के दोनों की जांच हो जाए, डिलीवरी का मोड डिसाइड हो जाए कि नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन, उस तरह से।
2: डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत की और उससे पहले बताया कि चार
5: जी चार विजिट्स होनी चाहिए मिनिमम।
2: जी जी, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आजकल लोग घर पे भी कर लेती है महिला।
5: बिल्कुल,
2: तो क्या वो ठीक होता है?
5: प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल वो ठीक होता है। अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं, रेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस समय आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। क्योंकि अगर जैसे 6 हफ्ते या 8 हफ्ते पे, जैसे एक बार अपने 15 दिन पीरियड चढ़ गए हैं, 1 महीने पीरियड चढ़ गए हैं, तो ऑलमोस्ट उस समय प्रेगनेंसी 8 हफ्ते की हो जाती है, 6 से 8 हफ्ते। उस समय हमको पहला अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। पहला अल्ट्रासाउंड अपन को इसलिए कराना होता है क्योंकि आपने सुना होगा ट्यूब में बच्चे लग जाते हैं आजकल, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, कभी ब्लीडिंग हो जाती है। तो एक सोनोग्राफी उस समय होती है ताकि देखना है कि प्रेगनेंसी इंट्रायूटराइन है, मतलब बच्चेदानी के अंदर ही है। सेकेंडली, कोई ब्लीडिंग नहीं है। थर्डली, कोई भी फैक्टर्स ऐसे नहीं है जिसके आगे चलते प्रेगनेंसी खराब हो जाए या अबॉर्शन हो जाए। साथ ही साथ में अपन जो गर्भवती महिला है उसका वेट एक बार चेक करते हैं, उनका बीपी चेक करते हैं, उनका यूरिन चेक करते हैं, और जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं उन इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन, सीबीसी जो हम कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, एक थायराइड की जांच कराते हैं और एक शुगर की जांच कराते हैं। बाकी बहुत सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं 12-13 जो हम करवाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी समय जैसे ही आपके घर पे पॉजिटिव आता है टेस्ट, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
2: जी, ये बहुत ही जरूरी बात आपने बताई डॉक्टर साहब की। अमूमन क्या होता है ना कि स्लाइड पे टेस्ट किया और लगा कि पॉजिटिव है तो हाँ कंसीव कर लिया है, उसके बाद बहुत सारे लोग होते होंगे जो नहीं जाते होंगे डॉक्टर साहब के पास कि अगर कोई परेशानी होगी तो जाएंगे, या घर के बड़े बूढ़े भी जो पुराने ख्याल के हैं वो मना बोल देते हैं कि नहीं अभी डॉक्टर के पास मत जाओ, अभी ज्यादा लोगों को बताओ मत।
5: सही बात,
2: तो ये सब चीजें होती है। लेकिन श्रोताओं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत जरूरी बात बताई है कि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है आप तुरंत इन जांचों के लिए डॉक्टर के पास जरूर पहुंचें। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम शुरू हो चुका है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें, जरूरी इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड, ये है आज की चर्चा का विषय। डॉक्टर उषिमा विजय हमारे बीच उपस्थित हैं। यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पर फोन करके सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। नंबर आपको बता देते हैं, स्टूडियो का नंबर 2941142, और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 जरूर लगाएं, नहीं तो आपका फोन हमारे स्टूडियो के फोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक गर्भवती महिला को पहली बार डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?
5: वही जैसा हमने डिस्कस किया, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे पॉजिटिव आता है उस समय आप जाएं, और अगर नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश, अगर दूर रहते हैं या फिर कोई भी घर पे कारण है, पहले 3 महीने में, जिसको हम बोलते हैं 12 वीक्स के अंदर, 12 हफ्ते के अंदर एक बार अपन डॉक्टर को विजिट बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, जैसे सोनोग्राफी अपन को उस समय करानी चाहिए, साथ ही साथ माँ का बीपी चेक होना चाहिए, वेट चेक होना चाहिए, और उसी के साथ में यूरिन टेस्ट होना चाहिए ताकि कोई भी प्रोटीन या प्रोटीन यूरिया या नहीं है और आगे चल के बीपी थायराइड की कोई शिकायत ना
2: जी,
5: हो
2: जी, जी, जी।

0: और साथ में क्लिनिकल चेकअप जो होता है, ये नहीं कि हमने गूगल देख लिया और हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, वो नहीं करना चाहिए. पहले 3 महीने और फिर जो दवाइयां होती हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट हमें पहले 3 महीने में स्टार्ट करनी ही होती है, ताकि बच्चे में कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हम लोग बोलते हैं जो बहुत बहुत कॉमन है आजकल के टाइम पे, तो फोलिक एसिड हम लोग को स्टार्ट करना होता है. साथ ही साथ जो उल्टियां होती हैं उसकी दवाइयां शुरू करनी होती हैं. तो अपने मेडिसिंस अपने करें, अपने इन्वेस्टिगेशंस करें और एक सोनोग्राफी 12 हफ्ते के अंदर अंदर वो जरूर करवाना चाहिए.
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो मेरे 3-4 जो सवाल थे अगले उसका जवाब आप पहले ही दे चुके हैं. ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट गर्भावस्था के दौरान क्या जानकारी देते हैं, थोड़ा ब्रीफ में बताएं.
0: सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्लड ग्रुप. बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है और इमरजेंसी सिचुएशन में जब अपन को ब्लड चढ़ाना होता है तो भागम भाग हो जाती है. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप. दूसरा सीबीसी. सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट. उसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, काउंट्स देखते हैं पेशेंट की कोई इन्फेक्शन नहीं है. तीसरा, गर्भावस्था में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, थायराइड की जांच. क्योंकि अगर थायराइड माँ को है और बहुत बहुत कॉमनली थायराइड हो जाता है, थायराइड बढ़ जाता है और हाइपोथायराइड जिसको बोलते हैं, बच्चे में मंदबुद्धि हो जाती है या क्रेटिनिज्म हम बोलते हैं, तो माँ को अगर थायराइड है तो बच्चे काफी इफेक्ट हो जाते हैं. तो हमको थायराइड की जांच सबसे पहले करानी है, साथ ही साथ शुगर की जांच. क्योंकि इंडिया में ऐसा कल्चर है और डायबिटिक पॉपुलेशन बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन को, तो डायबिटीज क्योंकि कोई यूजुअली चेक नहीं कराता है, ठीक है हम थोड़ा बहुत मीठा खा लेते हैं, तो हमें शुगर की जांच करानी होती है. साथ ही साथ वायरल मार्कर्स जो HIV है, हेपेटाइटिस के हैं, सिफिलिस के हैं, और साथ में यूरिन टेस्ट कराना होता है. यूरिन टेस्ट काफी इन्फॉर्मेटिव होता है, उससे हमें बहुत काफी जानकारियां मिलती हैं.
1: जी जी जी जी, जो कि बच्चे और जो गर्भवती महिला है उसके लिए और उसके परिवार वालों के लिए जानना भी जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एनोमली स्कैन ये क्या होता है.
0: एनोमली स्कैन ये अपन जो बोलते हैं, जो आम भाषा में
1: हिंदी नाम,
0: बिल्कुल, बनावट की सोनोग्राफी. हम जब मरीज को समझाते हैं हम बोलते हैं बनावट की सोनोग्राफी या बड़ी सोनोग्राफी.
1: अच्छा.
0: बड़ी सोनोग्राफी इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली ये बड़ी भी होती है क्योंकि कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट्स भी लगते हैं इसमें सोनोग्राफी करने में. और दूसरी बात, ये बहुत डिटेल्ड सोनोग्राफी होती है. ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे के ऑर्गन उस समय तक बन चुके होते हैं. ऑर्गन मतलब ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, यूरिन से रिलेटेड सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब कुछ बन चुका होता है. तो जो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स लेके पूरी डिटेल सोनोग्राफी करते हैं. उनकी स्पाइनल कॉर्ड चेक करते हैं, ब्रेन में एक एक चीज चेक करते हैं सारी, और बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं कि 20 हफ्ते का बच्चा, 18 से 22 हफ्ते की सोनोग्राफी होती है, 18 to 22 weeks में अपन बोलते हैं. और इस समय ये देखा जाता है कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स ठीक है या नहीं है, बच्चे को कोई सिंड्रोम तो नहीं है. जैसे अगर आपने सुना हो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं आगे चल के, उसके भी सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं. मतलब किसी के हाथ नहीं बने, किसी की उंगलियां नहीं बनी, किसी के क्लेफ्ट लिप हो रहा है, होंठ आधे हैं, या फिर पैर टेढ़े हैं, या फिर फ्लैट फुट है. ये सारी चीजें एनामली स्कैन में बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं, क्योंकि बच्चा पूरा बन जाता है. ग्रोथ मतलब वेट गेन इतना नहीं होता है. इस समय आप मान के चलें कि बच्चे का वजन कम से कम 200 to 350 grams होता है.
1: अच्छा,
0: सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही होता है. लेकिन ये बहुत डिटेल्ड सोनोग्राफी होती है, इसलिए छोटी छोटी छोटी सारी चीजें पकड़ में आती हैं. तो हम मरीज को बोलते हैं, अगर कोई भी सोनोग्राफी नहीं है, दूर दराज से आ रहे हैं, किसी भी गाँव से भी मरीज है, एनामली स्कैन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि एक डिटेल सोनोग्राफी से सब पता चल जाता है.
1: अच्छा, ये कितनी बार करवानी पड़ती है
0: सोनोग्राफी? एक बार एनामली स्कैन एक बार कराना होता है, जैसे मैंने बताया 18 to 22 हफ्ते के बीच में. लेकिन जो नॉर्मल सोनोग्राफी है वो हमें एटलीस्ट 3 बार करानी चाहिए. एक लेवल 1 सोनोग्राफी जो मैंने बोला 12 हफ्ते के पहले, सेकेंड एनामली स्कैन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है, और तीसरी ग्रोथ स्कैन जो बच्चे के बढ़ने को देखते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता जुड़ना चाहते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हेलो.
2: हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग.
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग. कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताएं.
2: जी, हम योगेश जांगड़े गुप्त छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं.
1: जी योगेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत.
2: ये जो गर्भावस्था का जो पीरियड होता है 9-10 महीने का, इसमें जो सोनोग्राफी है वो हमें कितने अंतराल में कराना चाहिए और कितने बार कराना चाहिए?
1: अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब अभी बता चुकी हैं, शायद आपने रेडियो देर से ऑन किया है, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं आपको.
0: जी, तीन सोनोग्राफी होती है जो मिनिमम हमको करानी चाहिए। पहली सोनोग्राफी जैसे ही अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, पता चलता है कि घर में बच्चा ठहरा हुआ है, उस समय कराएं अपन, उससे काफी सारी जानकारियां मिलती हैं। अगर वो मिस होती है तो पहले 3 महीने के अंदर अंदर 12 हफ्ते के अंदर एक सोनोग्राफी करानी होती है। दूसरी जो सोनोग्राफी है वो 18 से 22 हफ्ते

0: में जो एनामली स्कैन अभी हमने जस्ट चर्चा करी है उस पे, जो बनावट की सोनोग्राफी बोलते हैं जिसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स पता चलते हैं, और तीसरी सोनोग्राफी है जो हमें आखिरी में ग्रोथ स्कैन जिसको हम बोलते हैं वो करवानी होती है, उससे पता चलता है कि बच्चे की पोजिशन कैसे है, बच्चा उल्टा तो नहीं है सीधा है। दूसरी बात प्लासेंटा जो आंवल नाल है उसकी पोजिशन पता चलती है, पानी कितना है। तो मिनिमम 3 सोनोग्राफी होती है। अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है और माँ को कोई मेडिकल कंडीशन है या बच्चे में बनावट ठीक से नहीं हो रही है या ग्रोथ लैग है, उस समय हमें सोनोग्राफी जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें बार बार करवानी होती है। कम से कम 5 से 6 सोनोग्राफी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में और 3 सोनोग्राफी नॉर्मल प्रेगनेंसी में करवानी होती है।
1: जी बहुत शुक्रिया
0: जी,
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड।
0: जी
2: एक मिथ है कि बार बार सोनोग्राफी नहीं करवानी है, हालांकि इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं और हम लोग श्रोताओं को जानकारी देते रहते हैं आप जैसे एक्सपर्ट के थ्रू, तो ये जानना चाहेंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना क्या सुरक्षित होता है। जैसा कि आपने बोला कि पूरे 9 महीने के पीरियड में 3 सोनोग्राफी जरूरी होती है मिनिमम।
0: बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड जैसे एक्सरे होता है उसमें रेज निकलती है, अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव्स होती है, उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। अल्ट्रासाउंड कम्प्लीटली सेफ होती है माँ और बच्चे दोनों के लिए। पहले बहुत सारे मिथे और घर के बड़े लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड से गर्मी होती है और बच्चे को नुकसान हो जाएगा, ग्रोथ लैग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्ट्रासाउंड इज कम्प्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी, और आजकल जो मोडालिटीज आ गई हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे और माँ को कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स है, मतलब साउंड वेव्स है, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। तो अब मैं जैसे बताया, हमने वापस डिस्कस किया मिनिमम 3 सोनोग्राफी, लेकिन जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जैसे अगर 40 साल में कंसीव कर रहे हैं या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम लोग बोलते हैं, उसमें 15-15 दिन में भी सोनोग्राफी हम लोग रिपीट करवाते हैं अगर जरूरत होती है। साथ साथ में कलर डॉपलर, कलर वाली सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल करानी चाहिए। उसमें पता चलता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई एडिक्वेट मिल रही है नहीं मिल रही है, बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। कभी कभी बहुत सारी माएं जैसे इतनी गर्मी वाले में उसमें आती हैं कि बच्चा घूम नहीं रहा है, 2 दिन से बच्चा घूम नहीं रहा है, 1 दिन से बच्चा पानी उन्होंने कम पिया है, तो इस केस में हमारी कलर वाली सोनोग्राफी काफी इम्पोर्टेंट होती है। तो मिनिमम हम बोलते हैं 3 से 4 सोनोग्राफी, लेकिन अपन जितना अगर माँ और बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है, कम्प्लीटली सेफ है और हम जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें करवानी चाहिए।
2: जी जी जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कलर वाली सोनोग्राफी का,
0: बिल्कुल,
2: तो क्या वो सोनोग्राफी इन 3 सोनोग्राफी में इंक्लूड है या वो अलग?
0: जो ग्रोथ स्कैन हम लोग कराते हैं लास्ट वाली सोनोग्राफी जो मैं बोल रही हूँ एनामली स्कैन के बाद, उसमें यूजुअली हम कलर वाली सोनोग्राफी करा देते हैं। उससे हमें बहुत डिटेल पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, बच्चे में कलर मतलब ब्लड सप्लाई, कलर हम बेसिकली ब्लड सप्लाई को देखने के लिए करते हैं कि माँ की आंवल नाल से जो बच्चे में ब्लड जा रहा है वो ठीक से जा रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे ही अगर ब्लड कम हुआ, अब ब्लड किन कारणों से कम होता है, या तो माँ को अनीमिया है, माँ को डायबिटीज है, ओवरवेट है, उन कारणों में बीपी बहुत ज्यादा है, प्री एक्लेम्पशिया जिसको हम बोलते हैं, तो अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो बच्चे की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। अब उमन हम मानते हैं 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में एक इंडियन नॉर्मल बच्चा जो फीटस का वेट होता है, 2.5 से 3.5 किलो के बीच में, अगर इससे कम कुछ भी होता है तो वो कलर डॉपलर में जो कलर वाली सोनोग्राफी है उसमें पता चल जाता है।
2: उसके हिसाब से फिर आप
0: उसके दवाइयाँ देते हैं, हम लोग ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने की मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं और माँ को उसी तरह से हम लोग एडवाइस करते हैं।
2: जी जी जी जी। तो श्रोताओं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। एक अंतराल के लिए रुकते हैं और डॉक्टर ओशिमा विजय के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होते हैं।
3: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 88 शक्तिनगर, दशहरा मैदान, कोटा।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड IVF सेंटर, 12-13 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा। एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध। यहां पर IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों के तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711960223636। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी।
2: श्रोताओं, इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। डॉक्टर ओशिमा विजय हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जानकारी दे रही हैं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें, जरूरी इन्वेस्टिगेशन

0: और अल्ट्रासाउंड कब कब करवाने चाहिए, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हैं। अब तक आपने रेडियो अगर ऑन कर लिया है तो आपने सुन ली होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आपको मिलने वाली है। तो बस अपने रेडियो सेट से नज़दीकियां बनाए रखिए और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें फ़ोन कीजिए 2941142 इन नंबरों पर विद 0744 कोटा का एसटीडी कोड। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की थी हिस्ट्री की, अगर फैमिली में मेंटल हिस्ट्री है, कोई बच्चा मंदबुद्धि है और उसके बाद आपने जो बताया कि एनोमली जो स्कैन है उसमें पता लग जाता है, तो उस बच्चे का ट्रीटमेंट क्या गर्भ के धारण के दौरान ही आप करते हैं या
1: बिल्कुल
0: दवाएं बदलते हैं क्या, जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी को जो आप दवाएं देते हैं क्या वो दवाएं अलग होती हैं उनसे?
1: नहीं, दवाइयाँ ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम असेस करते हैं माँ में। एक तो फैमिली हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर माँ बोलती हैं कि फैमिली में या तो फादर की फैमिली में या मदर की फैमिली में ऐसा कुछ है कि डाउन सिंड्रोम है या फिर कोई अलग सिंड्रोम्स हैं या कोई बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं, उस केस में हम लोग 4-5 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले एज, क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें जब अगर माँ की एज 30+ है या 31 ईयर से ज़्यादा है, फादर की एज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर माँ की एज ज्यादा है वो फर्स्ट क्राइटेरिया बन जाता है कि हम लोगों को सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। दूसरा ये आता है जो डेटिंग स्कैन है, सबसे पहले जो पहली वाली सोनोग्राफी होती है उसमें देखना होता है, क्योंकि अमूमन देखा गया है जैसे जैसे एज एडवांस होती है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उस केस में ट्यूब में बच्चे लग जाते हैं, वो हमें देखना होता है। तीसरा एक लेवल 1 सोनोग्राफी होती है, लेवल 1 सोनोग्राफी होती है 11 से 13 हफ्ते पे।
0: अच्छा,
1: उसमें हम देखते हैं सॉफ्ट मार्कर्स जैसे होते हैं जो नेजल बोन और जैसे नाक की हड्डी ठीक से बनी है या नहीं बनी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ठीक से बनी है, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं है तो भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ है।
0: अच्छा।
1: तो सबसे पहले हमें 11 हफ्ते में ही पता चल जाता है कि बच्चे में आगे चल के कोई दिक्कत होने वाली है, कोई सिंड्रोम होने वाला है, मन बुद्धि से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी। उसी के साथ साथ हम डबल मार्कर कराते हैं, वो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, कोई पेनफुल नहीं है। डबल मार्कर में हमें काफी सारे चीजें पता चलती हैं जिससे आगे चल के अगर कुछ दिक्कत है बच्चे में वो पता चलती है। फिर 14 से 16 हफ्ते के बीच में एक एमनियोसेंटेसिस करके एक जांच होती है। एमनियोसेंटेसिस मतलब होता है जो पानी होता है बच्चे के चारों तरफ, हम उसको लेते हैं और कुछ टेस्ट रन करते हैं उसमें। उसमें माँ की सेल्स, बच्चे की सेल्स और उन सेल्स से हम लोग बहुत ही जो एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग जांचें करते हैं, उससे पता चलता है कि जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है बच्चे में। जो बहुत कॉमन डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, मतलब 18-21 ट्राइसोमी, मतलब काफी डिटेल चीजें हैं, लेकिन हम लोग वो टेस्ट रन करके पता करते हैं कि कुछ मन बुद्धि जैसा या मेंटल रिटार्डेशन जैसा आगे ना हो। साथ साथ में जो एनामिली स्कैन अपन लोग बात कर चुके हैं, उसके साथ में क्वाड्रपल मार्कर होता है, 4 ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें, उसमें भी पता चलता है। एंड फाइनली अगर सॉफ्ट मार्कर्स हैं जो सोनोग्राफी में भी पकड़ में आते हैं, इन टेस्ट में भी पकड़ में आते हैं, जैसे पैर ठीक से नहीं बने हैं, दिल में छेद है, जिस कभी कभी बोलते हैं हार्ट में छेद है, कभी किडनी में सिस्ट हो जाती है, मल्टी डिस्प्लास्टिक किडनीज होती है, कभी हाथ की उंगलियां छोटी रह गई है, या फिर ब्रेन में कोई सिस्ट है, तो ये बहुत सारी चीजें हमें इन टेस्ट से और इन सोनोग्राफी के माध्यम से पता चलती है, अलोंग विद फैमिली हिस्ट्री एंड अलोंग विद एज ऑफ द पेशेंट। तो इन 4-5 फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि बच्चे में कितने चांसेस हैं कि पैदा होने वाला बच्चा मन बुद्धि होगा या
0: नहीं होगा।
1: अगर उस केस में हमें लगता है कि बहुत हाई चांसेस हैं, तो हम डेफिनेटली पेरेंट्स को ऑप्शन देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या 20 हफ्ते के अंदर अंदर, जो कि लीगल लिमिट है, आजकल 24 हफ्ते हो गए हैं, 24 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, अबॉर्शन कराना है, ये पेरेंट्स की विल है और ये लीगल गाइडलाइंस के अंदर आते आते हम लोग वो ऑप्शन देते हैं पेरेंट्स।
0: जी जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से इन टेस्ट के बारे में बताया, अब जानना चाहेंगे बच्चे की हलचल, जो बेबी मूवमेंट होता है, कई बार मतलब गर्भवती महिलाओं में देर से होता है या इसका एक समय फिक्स होता है कि इतने हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी और बच्चे की हलचल माँ को महसूस होने लगेगी, किस केस में माँ को थोड़ा गंभीर होना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: जैसे यूजुअली हम लोग बोलते हैं 5.5 से 6 महीने के अंदर अंदर जैसे अपन को बेबी बम दिखने लग जाता है, पेट दिखने लग जाता है, उस टाइम तक अपन को बेबी की हलचल भी पता हो जानी चाहिए। प्राइमी में मतलब जो पहले बार माँ बन रहे हैं उनमें थोड़े से डिलेड होता है, जो दूसरी बार या तीसरी बार अगर गर्भावस्था धारण कर रहे हैं उनमें जल्दी महसूस होने लगता है।
0: अच्छा,
1: और अगर 5.5-6 महीने तक नहीं डिटेक्ट होता

है तो डेफिनेटली तब तक आपकी एक सोनोग्राफी हो चुकी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि सारी चीजें ठीक है। उसी तरह से जो पतले पेशेंट्स होते हैं जिनकी हेल्थ लीन एंड थिन है उनमें ज्यादा जल्दी पता चलता है, जो मोटे होते हैं उनमें देर से पता चलता है, काफी सारे फैक्टर्स हैं। उस समय आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉपलर स्टडी वगैरह कराएं, तो हार्ट बीट अगर आ रही है तो धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है। उसी में अगर पेशेंट कभी आके हमसे बोलते हैं कि नहीं फील हो रहा है तो हम पेशेंट को बोलते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, गर्मी है, पानी लॉस हो रहा होगा, तो आप हाइड्रेशन मेंटेन करें, या फिर आप कम खाना खा रहे हैं तो खाने

0: हो रहा है, टोटल अगर 9 मूवमेंट्स हो रहे हैं एक बच्चे में तो वो सेटिस्फैक्टरी है।
1: अच्छा
0: जी बिल्कुल
1: जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने।
0: तो बच्चा, क्योंकि हम बोलते हैं जैसे कभी कभी मरीज इतने ज्यादा टेंशन में आते हैं कि बच्चा बिल्कुल नहीं घूम रहा है, तो ये मान के चले कि बच्चा सारा दिन डांस नहीं करेगा पेट के अंदर आपके।
1: जी, जी, जी।
0: बच्चा 9 to 10 बार अगर घूम रहा है तो भी सेटिस्फैक्टरी है।
1: तो श्रोताओं, आपके फोन कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी डॉक्टर ओशिमा हमें दे रही है। यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें हमारे स्टूडियो के नंबरों पर फोन करें, 0744 कोटा का एसटीडी कोड लगाएं और फिर हमारे स्टूडियो का नंबर 2941142 डायल करें और सीधे जुड़ें डॉक्टर ओशिमा विजय से। डॉक्टर, अब थोड़ा सा रुख हम बदलते हैं और आते हैं टीके की ओर, वैक्सीनेशन, इसके बारे में भी विस्तृत शुरुआत से डिलीवरी तक की जानकारी चाहेंगे आपसे।
0: जैसा कि पहले टेटनस का इंजेक्शन लगता था, जो 2 टीके लगते हैं, आंगनवाड़ी का कार्ड बनाते ही जो आंगनवाड़ी वाले होते हैं वो बोलते हैं 2 टीके लगाने हैं, जो हमेशा से लगते आ रहे हैं टेटनस का इंजेक्शन। टेटनस का इंजेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आवलनाल कटती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड अपन काटते हैं, उस समय सेप्सिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो वो टेटनस
1: आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर जुड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: हेलो, हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: जितेंद्र बात कर रहा था मैं।
1: जितेंद्र जी, जगह का नाम बताएं।
2: ग्राम बाजड़।
1: फिर से बोले।
2: ग्राम बाजड़, तहसील तालेड़ा।
1: अच्छा, ग्राम बाजड़, तहसील तालेड़ा। जी जितेंद्र जी, पूछे डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं।
2: डॉक्टर साहब से पूछना था मैं, हमारे को जैसे मान लो पहले के, मान लो पहले का टाइम ऐसा था, मतलब आज के 15-20 साल पहले, मतलब बिना इलाज के भी नॉर्मल डिलीवरी होती थी पहले।
1: हाँ।
2: मतलब बिना दवाई गोली लिए अभी।
1: हाँ।
2: मान लो फिर उसी इलाज भी लेते हैं फिर भी ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, इसका कारण क्या है?
1: अरे वाह जी डॉक्टर साहब,
0: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब हमारे पास भी महिलाएं आती हैं, जब माताजी वगैरह आती हैं, 4-5 बच्चे हुए हैं, 4-5 बार सफाई हो गई है, उसमें से 2 जिंदा हैं 2 नहीं हैं, तो पहले ये बहुत अलग सिनेरियो होता हुआ करता था। और गांवों में अभी भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, 2-3 बार सफाई हो गई है, कोई बच्चा किससे एक्सपायर हुआ है उनको ये भी नहीं पता चलता कि हमारा बच्चा ख़त्म क्यों हो गया, वो बोलते हैं 6 महीने में ख़त्म हो गया, कोई दिल की बीमारी थी। तो ये सब चीज़ें आजकल का सिनेरियो में चेंज हो गया है। हम लोग जांचें जो कराते हैं, जो नॉर्मल बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन और सोनोग्राफी कराते हैं ताकि बच्चे में कोई दिक्कत ना हो। हर एक प्रेगनेंसी एक प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, हम लोग प्रेशियस प्रेगनेंसी मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, माँ की और बच्चे दोनों की जो जान होती है। पहले अबॉर्शन भी काफ़ी होते थे क्योंकि बच्चे का पता ही नहीं चलता था कि 3 महीने में ख़राब हो गया, 4 महीने में ख़राब हो गया। लेकिन आजकल जो अगर डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो हम लोग हर एक जान को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, हम सारी जाँचें कराते हैं ताकि कोई भी माँ और बच्चे को खतरा ना हो। जो दाइयाँ पहले डिलीवरी कराती थी उनमें डिलीवरी कराने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती थी, माओं की डेथ भी बहुत ज़्यादा होती थी इंडिया में, और आप मानेंगे राजस्थान में, राजस्थान मैटरनल मोर्टैलिटी पे नंबर 2 पे आता है, पहला असम में आता है। मैटरनल मोर्टैलिटी मतलब जो मातृ मृत्यु होती है, क्योंकि चेकअप नहीं होते थे, जाँचें ठीक से नहीं होती थी और डिलीवरी के दौरान माओं की मौतें बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ये हम लोग जांचें कराते हैं, हम सोनोग्राफी कराते हैं, दवाइयां खाते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ हो, माँ स्वस्थ हो, कोई भी किसी भी केस सिनेरियो में कभी भी माँ की और बच्चे की जान पे ना बनाए। सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि फिर भी सब चीज़ें कराने के बाद भी ऑपरेशन हो जाते हैं, देखिए ऑपरेशन कभी भी कोई डॉक्टर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ऑपरेशन करना है या उनको सिजेरियन करना है, या फिर जैसे भ्रांतियाँ होती हैं कि डॉक्टर को पैसे कमाने इसलिए ऑपरेशन कर दिया, नहीं, डॉक्टर हमेशा माँ और बच्चा दोनों को स्वस्थ चाहते हैं। अगर किसी भी कारणों से लगता है कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, गंदा पानी छोड़ दिया है, या फिर माँ को कोई दिक्कत हो रही है, उस समय हम लोग हर पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले पूरा का पूरा एक कंसेंट देते हैं, समझाते हैं कि आप और ट्रायल देना चाहते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चे को NICU में एडमिशन मिले, बच्चे को थोड़ा सा सीरियस हो जाए, या फिर हम नॉर्मल ऑपरेशन करके या फिर अपन सिजेरियन डिलीवरी करके स्वस्थ बच्चा हाथ में दें। तो पहले ऐसा होता था कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था इन सब बातों पे, लेकिन आजकल हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, हर एक माँ इम्पोर्टेंट होती है।

0: है एज एन कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते, तो इसलिए सारी जांच से सारी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी माँ और बच्चे के कंडीशन पर डिपेंड करती है, डॉक्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, वो एक सही गाइडेंस देते हैं पेरेंट्स को या फिर रिश्तेदार को कि आपके ऊपर है आप क्या करवाना चाहते हैं।
1: हेलो जितेंद्र जी, आप संतुष्ट हुए डॉक्टर साहब की बात से?
2: जी मैम।
1: और कोई सवाल?
2: यही सोचना था मैं।
1: चलिए, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आपने हमें फोन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की।
0: जी तो वैक्सीनेशन में सबसे पहले जो टेटनस का वैक्सीन होता है वो 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में लगता है। 16 हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने से एक टीका लगता है, दूसरा टीका 1 महीने के बाद लगता है। ये सेप्सिस प्रिवेंट करने के लिए, ताकि टेटनस ना हो जाए बच्चे को। जो आजकल जो बहुत ज़्यादा एडवांस जो वैक्सीन है, टीडैप वैक्सीन जो अपने बच्चों में लगती थी, डीपीटी की वैक्सीन जो डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस, वही आजकल माँ में भी लगती है टीडैप, टेटनस, डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस की वैक्सीन। पर्ट्यूसिस जो खांसी बोलते हैं और जो थेरिया है, जो गलघोटू जिसको बोलते हैं, वो वैक्सीन माओं में लगती है। ये करीबन 21-26 वीक्स में लगती है। ये आप मान के चले मतलब 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं या 7 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद में वैक्सीन दी जाती है ताकि बच्चे में ये सारी चीजें ना डेवलप हो। और थर्डली जो फ्लू की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन बहुत ऑप्शनल होती है, लेकिन ये हम इसलिए दे जाते हैं क्योंकि अपने इंडिया में इतने ज्यादा सीजन चेंज होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी हुई है गर्मी में, डिलीवरी हो रही है ठंड में, या प्रेगनेंसी अपने हुई है पूरे 9 महीने निकालने होते हैं एक माँ को, उसके बीच में बहुत बार सर्दी खांसी जुखाम होता है, और उसी का अगर सर्दी खांसी जुखाम बुखार होता है तो बच्चे में डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके। इसीलिए हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देते हैं कभी भी, जो 3 महीने हो गए हैं उसके बाद हम लोग दे सकते हैं। एक ही डोज में ये वैक्सीन लगती है लेकिन बहुत ज्यादा कारगर होती है। तो पहले टेटनस के टीके होते थे, आजकल टीडैप लगता है और इन्फ्लुएंजा फ्लू की वैक्सीन लगती है।
1: तो कुल मिलाकर ये बात है कि टीकाकरण भी जरूरी है जांचों के साथ,
0: बिल्कुल जरूरी है।
1: और श्रोताओं, इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे, अभी एक अंतराल के लिए रुकते हैं।
3: एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध यहाँ पर। IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों के तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711960223636। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड IVF सेंटर, 1213 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट 5A10 रंगबाड़ी रोड तलवंडी कोटा।
3: लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं।
4: जी हाँ, आप भी अपनी मुस्कान और हंसी से अब मोगरे के फूल बिखेर सकते हैं। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं। रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज। डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। मोबाइल 9928085808।
5: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल पर, और आज डॉक्टर ओशिमा विजय हमारे बीच उपस्थित हैं, जानकारी दे रही हैं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचें, ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड इस विषय पर। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो फ़ोन करें 2941142, ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। इससे पहले लगाएं 0744 कोटा का STD कोड और अपने सवाल के जवाब पाएँ डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, अब अभी आपने वैक्सीनेशन

0: क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि अब जागरूक जनता है और अवेयर है इस बारे में, तो सारी चीज़ें फॉलो करके चलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे उम्र, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले चर्चा में जिक्र किया था कि लेट आजकल प्रेगनेंसी लेट होती है क्योंकि शादियां लेट होती हैं। तो 40 प्लस के बाद की जो गर्भवती महिला होती है उसके वैक्सीनेशन में और एक सही उम्र जो 24, 25, 26, 27 साल की गर्भवती महिला है उसके वैक्सीनेशन में कोई अंतर होता है?
1: नहीं, वैक्सीनेशन में कभी भी अंतर नहीं होता है। वैक्सीन वही लगती हैं जो टेटनस नॉर्मल इंजेक्शंस होते हैं या फ्लू वैक्सीन्स और टीडैप की वैक्सीन्स। दवाइयों में डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा अंतर करते हैं। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब अगर 31 से नहीं तो आजकल 35 साल हो गई है बेसिकली, अगर 35 साल से ज़्यादा की उम्र है महिला की, उस केस में हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह ज़्यादा देते हैं, साथ ही साथ में मल्टीविटामिन्स वगैरह ज़्यादा देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इन केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बीपी के, थायराइड के और शुगर के। ये तीनों बीमारियां होती हैं आमतौर पर जो ज़्यादा देखी जाती है, एज रिलेटेड फैक्टर्स। साथ ही साथ में बच्चों में मंदबुद्धि होने के चांसेस, जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जैसे जैसे एज एडवांस होती है। अच्छा। क्योंकि शादियां लेट होती हैं, प्रेगनेंसी लेट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन केसेस में इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है। इनफर्टिलिटी क्योंकि ऑब्वियसली शरीर का एक हार्मोन रेंज होता है, उस केस में हार्मोन्स कम होते जाते हैं, हम लोगों को उनमें प्रेगनेंसी करने के लिए भी दवाइयां देनी पड़ती हैं। तो जो प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती हैं, जो ये वाली प्रेगनेंसीज होती हैं, उसी के साथ में हम लोग फिर उनको मल्टीविटामिन्स और मतलब कैल्शियम वगैरह की डोजेस ज्यादा देते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपकी बातों में मैंने 2-3 बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी सुना, तो इस बात पे थोड़ी रोशनी डालें। लेकिन अभी अच्छा लगा कि आपने प्रेशियस प्रेगनेंसी कहा, तो वो सुन के अच्छा लगा, लेकिन हाई रिस्क क्यों कहा?
1: हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है, माओ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज आती है, शादी लेट हुई है, प्रेगनेंसी लेट हुई है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। उसी की वजह से अगर इनफर्टिलिटी हो रही है,
0: सारी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होती है?
1: सारी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क नहीं होती हैं। जो अपने इंडिया में देखा गया 18 साल की एक लीगल एज होती है मैरिज की, उसके बाद में अगर वो प्रेगनेंसी अपने आप से स्पॉन्टेनियस हो गई है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है माँ में, बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है सोनोग्राफी से और सारी जांचों से, तो उसको हाई रिस्क नहीं बोला जाता है। अब माँ में जैसे एक एज हो गई है रिस्क फैक्टर, सेकेंडली जो बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी में देखा जाता है बीपी, शुगर और थायराइड, ये सारी चीजें जो तीनों हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी जो सारी हैं, जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेके होती हैं, वो सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी और प्रेशियस प्रेगनेंसी हम उनको बोलते हैं। प्रेशियस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा एक तरफ है, डेफिनेटली आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, लेकिन जो माँ बाप का, जो पेरेंट्स का, जो खानदान का एक मानसिक संतुलन होता है, जो मेंटल स्टेट होती है उन प्रेगनेंसीज में बहुत क्रिटिकल होती है, उसमें काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, एंड दिस डेफिनेटली फॉल्स अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि इनमें हमें बहुत सारे ध्यान देना होता है। टीके सेम रहते हैं, दवाइयां ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम हर 15-15 दिन में उनको बुलाते हैं कि आपकी हमको सारे असेसमेंट करने हैं। उस समय हम माँ का वेट गेन देखते हैं, बच्चे का वेट गेन देखते हैं सोनोग्राफी के थ्रू, उस समय हम बीपी देखते हैं कि माँ का बीपी ठीक चल रहा है, यूरिन से इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, और जितनी सारी इन्वेस्टिगेशन हमने जो पहले डिस्कस करी थी वो सारी होती हैं।
0: अच्छा, अब थोड़ी सी ब्यूटी की तरफ बढ़ेंगे, जो गर्भवती महिला है, क्योंकि पूरे 9 महीने वो एक जान अंदर पाल रही होती है, हार्मोन्स डेफिनेटली डिस्टर्ब होते हैं, दवाइयाँ बहुत सारी खाई जाती हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होती है, उस बीच में वो अपनी सुंदरता को देखते हुए सन टैन की तरफ हम जाएंगे कि सूरज से, जी क्योंकि अभी इन दिनों मतलब पिछले 2-3 सालों से गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ी, तो ये जो बहुत ज्यादा गर्मी है क्या गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक होती है?
1: बिल्कुल, गर्मी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सेकेंडली जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन होता है, उसकी वजह से नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। प्रेगनेंसी में जिनको ठंड वाली माहौल पसंद है उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीने नॉर्मली भी आते रहते हैं। उस केस में हमें सन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पहला तो ऑब्वियसली टैनिंग होती है चेहरे पे सन की वजह से, दूसरा प्रेगनेंसी हार्मोन्स जैसे जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उससे बहुत अनइवन स्किन टोन हो जाती है, जैसे कहीं पे काले हो रहे हैं, कहीं पे लाइट वो हो रही है, झाइयां आ जाती हैं। तो जो आजकल के जो यंग पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली पहले आप जितना अवॉइड कर सकते हैं सन को उतना अवॉइड करें, बाहर अगर एक्सपोजर सन का हो रहा है तो आराम से कपड़ा बांध के जाएं। सेकेंडली हाइड्रेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाइड्रेशन मतलब पानी,

0: जी
1: और काफी बार देखा गया जैसे 12 हफ्ते के अंदर पानी पीने से भी उल्टियां होती हैं, जो जिसको नौजिया होता है, जिनको उल्टियां आती हैं, तो पानी नॉर्मल नहीं पी पाते, तो उस समय अपन नींबू पानी पिए। अच्छा। एक बॉटल रखे जिसमें नींबू पानी बना के रखे, नमक और चीनी दोनों डाल के रखे, नारियल पानी डेली का हम लोग नारियल पानी बोलते हैं, और अभी मौसम में जब 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, नारियल पानी का सेवन ज्यादा करें। सुबह शाम अगर नारियल पानी पी सकते हैं। कुछ अवेलेबल नहीं है जो ग्लूकोन डी आता है बाजार में, एक ऑरेंज कलर का छोटा, ग्रीन कलर के छोटे, ग्लूकोन डी पानी बना के रखे और उसको सिप सिप करते हुए पीते जाए, एक साथ पानी नहीं पी सकते हैं। थर्डली क्लोथ्स का, कि जितने आप ज्यादा कपड़े पहनेंगे उतना आप सन को ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहन के जाएं अगर आप बाहर जाते हैं। चौथा, सनस्क्रीन के लिए बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि हम क्रीम इतनी महंगी महंगी क्रीम लगा रहे हैं।
0: जी,
2: डिस्कनेक्ट हो गया
0: जी। सूती कपड़े की बात कर रहे थे,
1: सूती कपड़े पहने, अपन कॉटन क्लोथ्स पहने, फुली कवर्ड पहने। और चौथा सनस्क्रीन, आजकल बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स होती हैं, महंगी ब्रांड्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन एक अच्छा सनस्क्रीन जो आपकी स्किन को सूट करे, अगर बाहर जा रहे हैं तो चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे सनस्क्रीन लगा के जाए।
0: सनस्क्रीन तो, पे आपको रोकूंगी, और एक छोटा शायद फोन कट गया था, दोबारा जुड़ने की, फिर से कट गया, सॉरी डॉक्टर साहब। जी, कंटिन्यू करें।
1: और तो सनस्क्रीन हमें जेनरस अमाउंट में, मतलब अच्छे अमाउंट में लगाना चाहिए। जो नारियल का तेल है, जो साबुन वगैरह है, वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा फायदा नहीं होता है। बाकी क्रीम्स जो आती है मार्केट में काफी सारी अवेलेबल है। उसी के साथ में जो खूबसूरती की अगर अपन बात करें, स्ट्रेच मार्क्स में बहुत ज्यादा आजकल जो यंग फीमेल्स हैं, जो छोटी फीमेल्स होती हैं, वो स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत वो होती हैं, कॉन्शियस होती हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स भी ये है कि वो जेनेटिक होता है, अपन स्ट्रेच मार्क्स को कभी भी प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर वो है, अगर माँ में है, या फिर क्योंकि स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, 9 महीने में पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो चमड़ी अपन बोलेंगे स्किन थोड़ी सी खिंच जाती है, तो जो फटती है, किसी किसी में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, किसी में नहीं होते, तो उससे परेशान ना हो। बल्कि आजकल फैशन बन गया, अगर आप मॉडल्स को देखें या फिर बाहर देखें, तो स्ट्रेच मार्क्स को एक्सपोज करने का फैशन हो गया। उस केस में बस हम ये करें कि मॉइस्चराइजर अप्लाई करते रहें। स्ट्रेच मार्क्स के लिए पर्टिकुलरली कोई चीज नहीं आती है, बहुत सारे मार्केट में ऐड रहते हैं कि इससे स्ट्रेच मार्क्स बचेंगे, इससे स्ट्रेच मार्क्स, लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं। अच्छा, ये पूरी मिथ है। आप सिर्फ एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करें ताकि खुजली ना हो, इचिंग ना हो, और बाकी नारियल का तेल कपूर में मिला के थोड़ा सा लगा लें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की थी नारियल पानी की नींबू पानी की। पुराने समय में मैंने मतलब अपने घर में सुना था कि प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी वाला जो नारियल खिलाया जाता था, चटक उसको बोलते हैं मेवाड़ी में और हाड़ौती में, कि ये खाओगे तो बच्चा गोरा
1: हो जाएगा।
0: तो ये क्या है?
1: ये फिर से मिथ है। बच्चा गोरा काला जैसे भी है, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स का जैसे कलर होगा, वैसे ही बच्चे का कलर होगा। नानी दादी से अपन मान सकते हैं, या फिर जो इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे कलर डिफाइन होता है।
0: इस बात को ऐसे जोड़ा जा सकता है कि जब दवाइयां जाके बच्चे को लग रही है तो चटक क्यों नहीं लग रही।
1: ये अगेन एक बहुत बड़ा मिथ है। नारियल खाने से बच्चा गोरा नहीं होता, लेकिन नारियल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। जो मल्टीविटामिन्स हम बाहर से गोलियों दवाइयां देते हैं, नारियल में वो काफी सारे होते हैं। तो पहले के जमाने में ये सारी चीजें नहीं आती थी कि न्यूट्रिशन एडिक्वेट मिलेगा इसलिए बच्चा अच्छा होगा, तो वो बोलते थे गोरा हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली गोरा नहीं होता। अगर अपन ऐसे देखें तो साउथ इंडियन सबसे ज्यादा नारियल कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनका स्किन टोन डार्क ही होता है, लेकिन बहुत ही हेल्दी स्किन होती है, बहुत ही शाइनी स्किन होती है। तो गोरा काला शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया, मतलब वो उससे अपन डिफाइन ना करें, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, बच्चे की स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, डिजीजेस नहीं होनी
0: जी,
1: चाहिए।
0: जी जी डॉक्टर साहब, मेरी ये बात टॉपिक से थोड़ी सी हटके थी। अब प्रोग्राम क्योंकि समाप्ति की ओर है, तो आपकी तरफ से एक संदेश चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड और जांचों के लिए, कि आप गर्भवती महिलाओं को क्या, उनके परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे अभी भी एक श्रोता ने पूछा था कि पहले भी डिलीवरियां होती थी, दाइयां कराती थी, तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग ने बात करी बीच में, प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, हर एक बच्चा और माँ इम्पोर्टेंट होता है। हम ये नहीं कर सकते कि एक बार अबॉर्शन हो गया दूसरी बार देख लेंगे, नहीं, जो हुआ है, क्योंकि माँ का मानसिक जो संतुलन होता है, जो मेंटल स्टेट होती है प्रेगनेंसी के दौरान में, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो सारे बच्चों के टेस्ट होने चाहिए, जैसे ही प्रेगनेंसी लगे आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर बहुत ज्यादा कहीं पे रिमोट एरिया से आ रहे हैं या गांव की फैसिलिटी दूर है, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना पीएचसी सीएचसी कर दी है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, हर एक गांवों में होते हैं
0: जी,
1: तो प्लीज एंटीनेटल विजिट्स करें, जो नॉर्मल बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो जांचें हैं वो करें, सोनोग्राफी एटलीस्ट 3 सोनोग्राफी करवाएं।

0: जी
1: और नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन वो आपके डॉक्टर बताएंगे, लेकिन अपन को साथ साथ में मॉनिटरिंग करते हुए एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेते हुए ही पूरी प्रेगनेंसी जर्नी कंप्लीट करनी
0: जी,
1: चाहिए।
0: जी जी, तो श्रोताओं इन जानकारियों के साथ अब कार्यक्रम हेलो डॉक्टर यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी मैं आपके साथी सीमा। इस कार्यक्रम का संयोजन रहा रामनारायण मीणा जी का और तकनीकी सहयोग हमें मिला निहाल सिंह जी और संजीव सिंह सोलंकी जी का। दीजिए अनुमति, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट 5A10 रंगबाड़ी रोड तलवंडी कोटा। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं। रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज। डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, मोबाइल 9928085808।
0: श्रोता अभी सुन रहे थे सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
3: अजमेर केंद्र सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ये आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने सभी नागरिकों से त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी त्योहार का उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्योहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5 शहरों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां आम नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहे हैं।
1: भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। गर्मी के इस दौर में शीतल पेय और खाद्य पदार्थों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्री गंगानगर।
0: भरतपुर में भी बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में अघोषित कर्फ्यू देखा जा रहा है। जैसलमेर में प्रचंड गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी जनजीवन को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलना शुरू होगा। कल से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इधर राज्य सरकार भीषण गर्मी में आमजन, विशेषकर राहगीरों और मूक पशु पक्षियों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु पक्षियों को तेज गर्मी और लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कल शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दाने और पानी के लिए परिंडे बांधे। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

0: गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज CSR कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होने वाली इस कार्यशाला में औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला के माध्यम से इन इकाइयों और संस्थाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। करौली में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पौधरोपण, गौ पूजन और रणगवा ताल पर दीपदान किया गया। जैसलमेर में स्वच्छता संरक्षण और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए और पेयजल स्रोतों की साफ सफाई कराई गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम अंतिम ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर, FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत और पहला गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म सनम बेवफा से। आवाज़ है विपिन सचदेवा की।

0: शुदा ये गीत आपने सुना विपिन सचदेवा की आवाज़ में, फिल्म का नाम सनम बेवफा, गीतकार सावन कुमार और संगीतकार थे महेश किशोर।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और श्रोताओं लीजिए, अब अगला गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म देसी बॉयज से। आवाजें हैं नीरज श्रीधर और हर्षदीप कौर की, इरशाद कामिल के बोल हैं और धुन है प्रीतम की।

श्रोताओं के रेडियो सेट पर अब ये धुन आ रही है आनंद राज आनंद की, और इस धुन पर गीत लिखा आनंद राज आनंद ने ही। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की, साथ में एक और आवाज़ आप सुनेंगे सीमा अनिल सहगल की।

और श्रोताओं लीजिए अब अंत में सुनिए फिल्म हिना का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

श्रोताओं, हिना फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगण कार्यक्रम सुनबाळी मारी संधि बहणिया ताई था की बहन परम ज्योति काढ़ीसू घणो घणो राम राम बहणियो। आशा करू छू कि ता सब बढ़िया होगी बहणियो। गर्मी तो घणी जोर की पड़ रही है और असी गर्मी में आपन आपनो और सारा परिवार को ध्यान रखाना, साफ सफाई को विशेष ध्यान रखाना, घर की साफ सफाई, बार की साफ सफाई, खुद की साफ सफाई। बने हुआ बार आपन देख रहे हैं कि छोटा छोटा बसमरा का बच्चा भी आपन पैदा हो गया और घर में ये उड़िया खुड़िया में ये बटिया रह चे और फिर ये आपने यो भी डर रहे थे कि ये खाबा पीबा की चीज़ हम न पड़ जाओ। तो जब भी आपन खाबा पीबा की चीज़ बना रहे हैं तो ढाक डपटर ही बनावा और ढाक डपटर ही मला ऐसा ही आपन कोई भी चीज़ खावा तो बढ़िया दौर खावा और यहाँ कीड़ा मकोड़ा को अपन ध्यान रखना। छोटी छोटी चीटियाँ, लाल चीटियाँ भी गणी हो रही चे बनाओ तो यहाँ चीटियाँ से भी अपन बचे रहा। अब यहाँ से बचबा कारण अपन काय करेंगा बनाओ का अपन जैसे अपने ये शक्कर का डिब्बा में आ जाओ चे, चून की टंकी में आ जाओ चे तो ये थोड़ी सी गड़ दिया अपन कटोरे में गोल लिया और आस पास ही डब्बा का आस पास अपन ही गोलर एक लण सी बना दिया और ऐसे ही अपन चून की टंकी का भी बना दिया तो ये लाल चीटियाँ अपने यहाँ में खबा पीबा की चीज़ हम बिना होगी। और ये बसमरा जी हम बसमरा से भी अपन बचे रहा और यहाँ का भी घर के बाहर खाड़वा की कोशिश करा, घर में दिखा हो तो यहाँ का बारह बुहारा से बारह खाड़ दिया और ढाक डपट चीज़ा रखाना और खाबा पीबा को और ये गर्मी से ध्यान रखाना।

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बने हूँ आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। महिला और किशोरियों को मासिक धर्म यानी कि पीरियड का टर्म पर सुरक्षित स्वच्छ अर्थात में ही सावधानी सुरभा का लेकर आवश्यक जानकारी संसाधन और शारीरिक मानसिक देखभाल जे ही मासिक धर्म का दौरान घनी जरूरी है। इस जुड़ी सामाजिक कुरीतियाँ वर्जनाक तोड़बा कर लेकर हर साल 28 मई का दिन मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनायो जाओ छे। बणो मासिक धर्म का दौरान छोका स्वास्थ्य और स्वच्छता का लेकर या बातों को ध्यान रखान वो घणो जरूरी छे। जैसे सेनेटरी उत्पाद हमेशा छोकी गुणवत्ता वाला ही सेनेटरी पेड कप या टेम्पोन को उपयोग करा। पेड बदलवा को टर्म भी निश्चित करा क जैसे अपना ब्लड स्त्राव ज़्यादा हो रो है खून स्त्राव ज़्यादा हो रो है तो अपन 6-8 घंटा के बीच में या फिर अपना ज़्यादा ही हो रो है रक्त स्त्राव तो अपन 3-4 घंटे के बीच में भी अपन पेट बदल सका जा और बार बार पेट बदला और सूखो पेट रखाना इस अपन संक्रमण से भी बचेगा। और साफ सफाई भी रखाना गुप्त अंगों के ताई हमेशा साफ और सूखा रखाना। हल्का गर्म पानी से धोआ और हानिकारक साबुन या केमिकल आला उत्पाद को प्रयोग न करा या सो अपन बचा। सही निस्तारण यानी कि काम में लिया गया पेड़ का ताई सही तरीका से नष्ट करा। अटूटी न पटका अटूटी न फकावा कूड़ादान में ही डाला और कचरा की गाड़ी में पटका। आहार और आराम को भी ध्यान रखाना। इस दौरान खाबा पीबा को ध्यान रखानी चाहिए। आयरन की कमी न होनी चाहिए। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां अपन खावा फल फूल फल खावा दूध पीवा पानी पर्याप्त मात्रा में पीवा इसो अपना स्वास्थ्य छोको रहो और अपन गताई ये धन भी आराम से अपना खट जाऊगा। साफ सफाई को विशेष ध्यान अपना रखानी चाहिए। और बणो मासिक धर्म स्वच्छता समग्र स्वास्थ्य को एक अभिन्न अंग छ। मासिक धर्म के दौरान कोई भी गंभीर समस्या जैसे पेट दर्द पाँव दर्द चिड़चिड़ापन माथो भड़कबो असहनीय दर्द या अत्यधिक रक्त स्त्राव उबा के कारण आपन परेशान हो जाऊँ चाह तो ऐसी स्थिति में अपन न योग्य डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेनी चाहिए। और बणो एक बात और भी है कि घनी बेटियाँ अपना बेटियाँ रहे और यहाँ बेटियाँ की उम्र 12-18 के बीच में होगी और यहाँ का मासिक धर्म हालताएँ भी ना आए तो अपनी एक जिम्मेदारी बन जाओ चे। हर माँ की यह जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची को बच्ची के ताई छोकी बड़ा डॉक्टर का ताई दिखावा रोग स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले उनको इलाज करावा। और मासिक धर्म आप बहुत जरूरी है। एक उम्र रची की भी 12 साल की हो जाओ बच्ची उनका बाद ही आजकल तो छोटी छोटी बच्चियाँ ही पीरियड टाइम से हो जाओ तो अपन थोड़ा सो का अपना बाल बच्चा पर भी ध्यान दिया। और ये मासिक धर्म आबो अपने बच्चों के लेकर बहुत जरूरी है और अपने ही बात पर ध्यान दिया।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
4: फिर से
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
8: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
4: काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
8: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बाण्याओं कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊंगा और सुनूंगा अपन यू मिठो सो लोक भजन नानजी महाराज की आवाज में।

0: अवस्था एवं माँ बच्चे से संबंधित स्वास्थ्य जानकारियों के संबंध में या भेंटवार्ता चे तो जानकारी दे रहा चे श्री भागीरथ शर्मा और यहाँ से बातचीत कर रहा चे श्री राम नारायण जी मीणा। तो आओ बने सुनाया भेंटवार्ता।
1: तो कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा नमस्कार। बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको बताएंगे और ये योजना है किलकारी कार्यक्रम के संबंध में। किलकारी कार्यक्रम इससे किन किन को लाभ मिलता है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस योजना के कार्यक्रम अधिकारी श्री भागीरथ शर्मा जी को। तो भागीरथ शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: थैंक यू। नमस्कार सर
1: जी। तो देखिए, जो किलकारी है, ये किलकारी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही और एक छोटे से मासूम बच्चे की हंसी की कल्पना हमारे सामने साकार होती है। तो ये बताइए कि किस तरह से ये योजना किसके लिए बनाई गई है और इसका प्रारूप क्या है?
2: जी सर, जिस तरीके से सर इस किलकारी योजना का नाम है किलकारी
1: जी,
2: तो हम जैसे ही किलकारी शब्द आता है तो घर में माँ के एक बच्चा होने के पहली जो इसकी आवाज होती है, इसको हम पहले जैसे बच्चा रोदन करता है तो उसको किलकारी बोलते हैं। उसी शब्द से कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो कि उसके घर में किलकारी गूंज गई है, तो उसी से ही ये शब्द अपना प्रेरित हुआ है।
1: जी, जी,
2: और ये भारत सरकार की मोबाइल आधारित ऑडियो मैसेज की एक स्वास्थ्य सेवा है। ये स्वास्थ्य सेवा सभी गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, जिसमें एक डॉक्टर अनीता काल्पनिक कैरेक्टर है।
1: अच्छा,
2: जो
1: अच्छा।
2: सभी लाभार्थियों को महीने वाइज मंथली कॉल करके और उनको संदेश देती है उनके स्वास्थ्य के प्रति कि उन्हें उस महीने में कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं लेनी है और किन किन चीजों का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है।
1: तो एक तरह से ये हुआ कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए एक तरह से योजना है।
2: जी सर बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी योजना है ताकि वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और जन्म देने के बाद में उस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके।
1: अच्छा, तो अब ये बताइए कि सबसे पहले ये करना होगा कि उन्हें, जो गर्भवती माताएं हैं, उन्हें अपना कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?
2: जी सर बिल्कुल, आपने सही कहा कि उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके गर्भ का उसका पंजीकरण उसे एएनएम या आशा बहन जी के पास करवाना है या फिर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर करवाना होता है। जब वो महिला अपना गर्भ का पंजीकरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर करवा लेती है, तब करवाने के बाद में उसका जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद की जो प्रोसेस है, जो एक स्वास्थ्य विभाग का एक आरसीएच पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन होता है।
1: ठीक है।
2: तो जैसे ही उस महिला का चौथा महीना स्टार्ट होता है, चौथे महीने के पहले दिन से ही उस महिला के पास किलकारी का संदेश आना शुरू हो जाता है और वो संदेश उसको हर महीने आता है, चौथे महीने से लेके जब तक उसका बच्चा ना होके, उसका बच्चा एक साल का नहीं हो जाता तब तक उसके पास किलकारी का संदेश आता रहता है। ऐसे करके सर टोटल 18 महीने होते हैं, 18 महीने में टोटल 18 और उसको संदेश आते हैं और हर महीने के अंदर उसको कौन सी प्रायोरिटी सर्विस लेनी है या कौन सी सेवा।
1: जन्म के बाद भी सेवा चलती है?
2: जी सर बिल्कुल,
1: यानी बच्चे को और माँ को किस तरह ध्यान रखना है
2: जी,
1: वो जानकारियां भी उसको दी जाती है।
2: जी सर बिल्कुल,
1: है ना। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, इसको आपके विभाग या जो आप लोग हैं इस योजना से जुड़े हुए लोग हैं, आप कार्यक्रम अधिकारी हैं, तो आपकी क्या भूमिका है इसमें, आप क्या करते हैं इसमें?
2: जी सर, हमारी भूमिका ये रहती है कि हम जो रजिस्ट्रेशन है उसको अर्ली रजिस्ट्रेशन का हम ज्यादा से ज्यादा उसको अप्लाइज करते हैं कि जो भी एएनएम या आशा के द्वारा गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन किया जाए वो उसको 12 वीक के अंदर अंदर किया जाए, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर किया जाए ताकि हम उनको टाइमली किलकारी कॉल की सर्विस उपलब्ध करा सके। दूसरा, जब भी कोई आशा कार्यकर्ता या फिर एएनएम बहन जी उसके गर्भ का पंजीयन कर रही है तो उस टाइम पे उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसकी एलएमपी और ईडीडी सारी चीजें सही लिखे ताकि हम उसको समय पर सही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उसको प्रदान करा सके, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि लाभार्थी का मोबाइल नंबर सही होना चाहिए ताकि सही होने पर ही हम उसको स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही किलकारी कॉल की सेवाएं जाती है।
1: किलकारी कोल नाम में
2: जी बिल्कुल सर।
1: तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ये स्वैच्छिक है या फिर हर गर्भवती महिला को कराना अनिवार्य है, जैसा कि हमारे यहाँ ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये सब भी उन गर्भवती महिलाओं का समय समय पर ध्यान रखती हैं और उन्हें सेवाएं देती रहती हैं, तो क्या उनकी जानकारी में भी है ये योजना उनकी?
2: जी सर बिल्कुल सर, सभी आशा और ANM बहन जी को

0: इस योजना के रिगार्डिंग हमने प्रशिक्षण भी दे रखा है
1: जी।
0: और सभी आशा और एएनएम बहनजियों को इस योजना के बारे में जानकारी है और यही एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मान लो कि कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने स्वास्थ्य केंद्र पर कराना अनिवार्य होता है। जैसे किसी ने आंगनवाड़ी केंद्र है तो आंगनवाड़ी केंद्र पर कराए, सब सेंटर है वो उस गांव में सब सेंटर पर कराए, या फिर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराए। ये सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक कोई भी महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने गर्भ का पंजीकरण नहीं करवाती तब तक उसको गवर्नमेंट की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता।
1: अच्छा, अब भागीरथ जी हमें ये बताइए कि इस किलकारी योजना में किन किन विषयों की जानकारी दी जाती है?
0: किलकारी योजना के अंदर सर एक गर्भवती महिला को उसके गर्भ से लेके और जब तक उसका बच्चा नहीं होके, उसका बच्चा एक साल का नहीं होता तब तक की पूरी सेवाएं दी जाती है। उनके अंदर मुख्य रूप से चार प्रकार की सेवाएं अपने उपलब्ध है। पहली सेवा माता के स्वास्थ्य के बारे में कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान और अपनी डिलीवरी तक कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान खतरनाक लक्षण, अपन कहें कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, जिससे कि एनीमिया हो गया अपना। एनीमिया से आज के दौर में सर काफी महिलाओं की मौत भी हो रही है कि एनीमिक है, उस वजह से कि खून की कमी अपने किसी गर्भवती महिला में हो जाती है तो वो एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाती। ऐसे ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के काफी सारे लक्षण हैं, उन सभी लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाती है। सभी एएनसी चेकअप्स के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको उसके पोषण से संबंधित जानकारी भी दी जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति किस तरीके का पोषण खुद ले। इसके अलावा उसको एम्बुलेंस कैसे बुलाते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तथा समय पे उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संस्थागत प्रसव के लिए ही मोबिलाइज किया जाता है कि वो मोटिवेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो संस्थागत प्रसव ही करे और जो होम डिलीवरी है उसको इग्नोर करे। इसके अलावा सर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, टीकाकरण के बारे में और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे परिवार नियोजन का भी है सर अपना की जनसंख्या नियंत्रण पे भी अपने भारत सरकार काम कर रही है, तो परिवार नियोजन को अपनाकर हम जनसंख्या नियंत्रण पर भी कार्य कर सकते।
1: ये योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चला रही हैं?
0: ये सर दोनों ही मिलकर चला रही है। वैसे तो मुख्यतः ये केंद्र सरकार की योजना है, बाकी राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन से सभी राज्यों में ये चल रही है और अपने राजस्थान में भी ये सर काफी समय से ये योजना चल रही है।
1: अच्छा, आजकल क्या होता है कि कई नंबरों से कॉल आते हैं लोगों के पास, तो वो जो अननोन जो नंबर हैं उनको लोग अवॉइड करते हैं, नहीं उठाते हैं कि पता नहीं कौन से क्या पूछेंगे, कौन सा ओटीपी पूछेंगे, तो इसका कोई समाधान है कि कोई नंबर आप जब आप दे रहे हैं कि इस नंबर से कॉल आएगी आप इसको इस नाम से सेव कर लीजिए?
0: आपने बहुत सही सवाल पूछा है
1: जी।
0: इसके लिए सर हम जितने भी आशा और एएनएम वर्कर्स हैं अपनी, उनको हम इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि जब भी वो एएनसी रजिस्ट्रेशन करे तो उस नाम पे जिस नंबर से कॉल आता है 1600403660 इसको हम डॉक्टर अनीता के नाम से उनके मोबाइल में सेव करवाने के लिए बोलते हैं। और साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो ममता कार्ड के ऊपर इस नंबर को लिख दे और उनको बता दे कि इस नंबर से कॉल आए तो आपको इस कॉल को उठाना है और सुनना है।
1: डॉक्टर अनीता के नाम से वो बताएं?
0: जी बिल्कुल सर,
1: है ना
0: जी बिल्कुल सर।
1: जैसे ही इस नंबर से कॉल आएगा तो डॉक्टर अनीता उन्हें गाइड करेंगी
0: जी।
1: अच्छा अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, अब ये बताइए भागीरथ जी कि किलकारी प्रोग्राम की कॉल आने पर अगर कोई लाभार्थी कॉल अटेंड नहीं कर पाए उस स्थिति में कॉल कैसे सुना जा सकता है?
0: जी सर, आपका ये दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है और इसकी जानकारी हमें हमारे सभी श्रोताओं को होनी चाहिए कि जैसे कि डॉक्टर अनीता का कॉल किसी भी लाभार्थी के पास आता है और वो कॉल अटेंड नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में भारत सरकार ने एक नंबर और जारी कर रखा है 144-23।
1: अच्छा,
0: उस नंबर पर कॉल करके लाभार्थी अपनी छूटी हुई कॉल को पूरी को सुन सकता है।
1: और नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए।
0: जी सर, 144-23 किलकारी। इस नंबर को भी सर हम ममता कार्ड पर किलकारी के नाम से लिखवाते हैं और उन लाभार्थियों को बताते भी हैं कि अगर उनका कॉल छूट जाता है तो इस नंबर पर कॉल करके वो उस छूटी हुई कॉल को पुनः सुन सके और ये कॉल वो पूरे महीने तक कितनी भी बार कॉल करके सुन सकती हैं। ये एक निशुल्क नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है।
1: अच्छा, तो इसके क्या क्या उद्देश्य आप लोग लेकर चल रहे हैं इस योजना के?
0: जी सर, हम इसका मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि हम जो भी मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है इसको कम कर सके और हेल्दी बेबी को हम जन्म दे सके कि जो भी हमारी नई जनरेशन आ रही है वो हेल्दी हो और सभी महिलाओं को, दूर दराज की भी जो महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य के संबंधित सभी जानकारी हो तथा अपने परिवार को वो स्वस्थ रख सके। स्वस्थ, वो एक कहावत है कि सर स्वस्थ रहेगा परिवार तो बढ़ेगा परिवार।
1: अच्छा, कब से चल रही है भागीरथ जी ये योजना?
0: सर 2015 से चल रही है सर और ये सभी एनसीसी के लिए चल रही है काफी टाइम से सर इसका, और लाभ भी काफी सारे लोगों ने इसको लिया है और हम फील्ड में जैसे मॉनिटरिंग करते हैं या फील्ड विजिट

0: करते हैं, तो उस दौरान हमको काफी सारी केस स्टडीज भी मिली है, काफी सारी महिलाओं के बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आए हैं इससे रिलेटेड। तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छा भी बताया और हम सभी लाभार्थियों को मोटिवेट भी करते हैं, जैसे कि एक उनको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाकर या एक वो करके और उनको सबको मोटिवेट करवाते हैं। दूसरी
1: सक्सेस स्टोरीज जी हैं आप लोगों के पास।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी तरीके से।
1: अच्छा एक चीज हाँ मुझे ध्यान आ रही है कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं या दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, वो हिंदी नहीं समझती हैं
0: जी,
1: तो कोई स्थानीय भाषा में इसका कोई विकल्प है कि जो आपकी डॉक्टर अनीता है वो उन्हें राजस्थानी में या जो हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी समझा सकें?
0: जी सर, अभी तक तो सर ये राजस्थान के अंदर हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है। पर अगर पॉसिबल हुआ आगे से भारत सरकार द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय लिया गया तो जरूर इस तरह की भाषा उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे और हम आपके ये जो सुझाव है वो भी आगे रखने की कोशिश करेंगे।
1: चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी कल्याणकारी योजना के बारे में। कुछ और बताना चाहेंगे इस योजना से संबंधित, कोई बात छूट रही हो तो बताइए।
0: सर मैं लास्ट सभी लाभार्थियों को एक संदेश देना चाहूंगा कि वो सभी किलकारी योजना से जब भी कॉल आए तो किलकारी योजना का जो इनकमिंग नंबर है 1600403660 इसको डॉक्टर अनीता के नाम से अपने मोबाइल में सेव करें ताकि जब भी कॉल आए तो वो इस कॉल को उठाकर डॉक्टर अनीता के नाम से वो रिफ्लेक्ट होगा, इस कॉल को उठा के और वो सुने ताकि हम फ्रॉड कॉल से बच सके। दूसरा की जब भी आपके पास कॉल आता है और आप रिसीव नहीं कर पाए तो उस कंडीशन के लिए भी किलकारी का दूसरा नंबर है 144-23 इस नंबर को भी सेव कर ले, तो ताकि आप उस नंबर पर कॉल करके सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ले सकें।
1: तो श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा गर्भावस्था और मां बच्चे से संबंधित स्वास्थ्य की जानकारियां अपने मोबाइल पर निशुल्क प्राप्त करने के लिए किलकारी योजना पर ये थी बातचीत। जानकारी दे रहे थे इस योजना के कार्यक्रम अधिकारी श्री भागीरथ शर्मा। तो अब इस स्लोगन से हम अपनी बातचीत को समाप्त करेंगे कि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद किलकारी हर परिवार के साथ। भागीरथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सर।
2: बाणे आपण सुनऱ्याचा भेटवार्ता किलकारी गर्भावस्था एवं मां बच्चे से संबंधित स्वास्थ्य जानकारियों के संबंध में या भेटवार्ता आपण न सुनी और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने अपने अधिकारी जी ने अपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब आगे बढ़ाऊँ अपन कार्यक्रम में और आज जानकारी मंच गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण से बचे बाणियों आभार। तो उंधाड़ो पूरो तेवर में और नौ तपा भी चाल रही है, खव है नौ तपा में भीषण गर्मी पड़े और पड़ भी रही अपन देख भी रहा चा, तो बाणियों ही तेज गर्मी में डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण जे की समस्या बाकी संभावना ज्यादा ही हो रही है। डिहाइड्रेशन से बचवा के लेकर दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी अपन न पीनी चाहिए, तस लागबा को इंतजार अपन न कतई न करनो और पानी बार बार ही पीणो चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में सादा पानी या घड़ा को पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या फिर छाछ लस्सी अपन पीता रहूँगा। खाबा को मतलब बण्या होट सूख बना देना यानी कि होटा पर थोड़ी सी पानी की नमी रहनी चाहिए, जैसे अपन निर्जलीकरण से बच सका चा। बण्या डिहाइड्रेशन से बचबा के लेकर यहाँ बातों को अपन ध्यान रखाना, जैसे यहाँ पानी पीवा की आदत अपन डाल लिया और अपन खुद पानी पीवा तो अपना घर का छोटा मोटा बच्चा ही और बाल बालका ही और बूढ़ा का ताई भी अपन पानी पवा और ये आदत भी अपना लेकर छुकी रहेगी। एक बोतल में पानी भर भी रखाना अपन और जहाँ भी बटा हूँ बोतल दारा लेर बटा और बार बार पानी पीता रहा। दूसरी बात पानी तो अपन पीवा इच्छा, साथ में वो आर एस को गोल भी बना लिया कोई दिन वो भी पी लिया, नींबू की सिकंजी, नारियल पानी, लस्सी, छाछ या कोई जूस भी अपन पी सका चा। पानी से भरपूर फल खावा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, कांकड़ा, संतरा, आम, केरी को आच आपन बना लिया और यो भी आपन पीवा। बण्या आपन टेम टेम पानी पीवा या फल लस्सी आच पी रहा चा तो आपन पानी की कमी आप न होगी और फिर भी घनी बार आपन घर का काम अशा उलझ जाऊँ चा का आपन तस्बी लागती रह तब भी आपन पानी न पीवा और अपन तसाया ही मरता रहा जा और पानी काढ़ी अपन ध्यान रहा बाद में पी लेंगे बाद में पी लेंगे ऐसा करता करता अपन ये डिहाइड्रेशन की चपेट में आ सका जा। तो थोड़ा सो ध्यान अपन रखाना बने पानी बार बार पीणो चाहे और जहाँ कर डिहाइड्रेशन की समस्या होगी या कोई लक्षण नजर आ रहा है तो वो लक्षण कायम हो सके जे पीलो रंग को पेशाब आओगो, चक्कर आओगा, थकान होगी, तो बने थोड़ा सो ध्यान अपन रखना और अपनो स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और पानी बार बार पीणो चाहे। और आज तो चाल को टर्म हो रहे जो फिर

श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आपने ट्यून किया है FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज के साथ साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। अब आप आनंद लेंगे विविध भारती सेवा के।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है, वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है, तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है, जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या

0: फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और ट्वेल्थ के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई एक्चुअली कन से, कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रेन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्डवर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
0: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
0: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
1: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है, और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे।

0: तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करे, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है। और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको इम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड कि जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फेटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा, उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से

0: विस्तार दे दिया।
1: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन दिया, एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
0: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
1: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3,500 डॉक्टर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है, नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं।

0: हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था. तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे. तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था, जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी.
1: और क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए.
0: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था, और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी, तो कूद गई थी. और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई. लेकिन मैंने वहां पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया, और फिर वो सर्वाइव हुई. पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है. लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं. तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया, मैंने उनका पल्स देखा, तो पता चला. CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई, तो उनकी जान बच गई. ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया. दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया. तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए. फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना, फ्लाइट में थोड़ी पैनिक हो जाता है. तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए. जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई. अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी, तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए. तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड. तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रोका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में. ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन. तो
1: लेकिन अगर कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई. आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो लाइक कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है, तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं. उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं. एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए. बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए. ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स. तो यू नो, उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में. तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं, 2014 से. तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया. हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया. उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी. तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है.
1: जी जी.
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए. आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है. और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख, पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए.
1: जी.
0: तो वो एक अच्छा मकसद है. एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था. CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था.
1: जी.
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे

0: हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है.
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है.
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है. और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं. तो उसको ये जेन्युइन डर था. तो मैंने बोला देखो, अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं. हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है. अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ. जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो. एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो. और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा. एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला. अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा. तो हमें कोशिश करनी चाहिए. हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं. मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी. तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है. और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं. तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको.
1: बिल्कुल. तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है. इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है. तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो. डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की.
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहां पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है. वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू.
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं.
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे. तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो वैसे गाना था. सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था.
1: वाह वाह.
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रांग पार्ट न हो. तो ये बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है. समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए.
1: बिल्कुल.

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का. और

0: आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था, तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी तब मैं बायोप्सी करूंगी तब मैं ये करूंगी। मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली, तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
1: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग वैक्सिंग सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई

0: सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग वैक्सिंग सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद खतरनाक है.
0: ये बहुत खतरनाक है. अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में. चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी. एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी. तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था. लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑल द मोस्ट 6 महीने 7 महीने किए और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी. अभी तो टाटा में भेजा हुआ है. बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है. ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है. ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है. बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके. क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली. बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी.
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए. तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी.
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है. उनको हर जुगाड़ आता है. इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी.
1: सेम दवा.
0: हाँ, सेम दवा. सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है. क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं. बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई है, एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है. तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया. और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयां फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर

0: कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे। जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है। वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किकबॉक्सर आल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करे, न कि क्योज में यूज करे। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारी देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं। वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में

0: हमारी इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
1: जी.
0: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और वी जस्ट प्रे और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से. रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तंबाकू जानलेवा होता है, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

Tarang, tarang. विविध भारती से लीजिए पेश है प्रोग्राम रंग तरंग। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था झूमेरे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो
3: कुर्बानी। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
6: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल अलका याग्निक कविता कृष्णमूर्ति का गाया हसन कमाल के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक गीत आप सुन रहे थे। रंग तरंग कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। रंग

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: जाए तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
1: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है
2: जी,
1: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित है। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है
1: जी। ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
2: जी।
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
2: जी।
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम

0: अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका

0: निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए।
3: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
4: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
3: तो कोई बड़ा है घर में?
4: हाँ, घर पर माता जी है ना।
3: जी बुलाइए।
5: माँ।
2: हाँ।
5: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
3: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
5: माँ, माँ।
6: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
6: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
6: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
7: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
7: ऐसे नहीं,
5: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
6: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
7: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।

0: उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बावला कोजर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। तुमसे अच्छा

0: सुनीत का ये सुरीला संगीत था। मंजू सुल्तानपुरी के बोल मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत था। और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तरह से।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के

गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान यहां मेला भी लगाया गया। डूंगरपुर में शहर में ईदगाह तक जुलूस निकाला गया और सामूहिक नमाज अदा की गई। इसी तरह भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा में अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र की कोई भी शंका अनसुलझी न रहे और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में ऑन स्क्रीन मार्किंग को लागू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान होटल, ढाबों, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल तथा अस्थायी बस्तियों में रह रहे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो आगामी जुलाई माह से 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रही है। किशनगढ़ को दिल्ली और नोएडा से जोड़ने वाली इन नई फ्लाइट्स के शुरू होने से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और आसपास की बड़ी आबादी को बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा ने बताया कि 1 जुलाई से दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू होगी। ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसके अलावा 2 जुलाई से नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू की जाएगी। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। अजमेर जिले में आज एक स्कॉर्पियो में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। घटना बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास हुई। इस घटना में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां, पत्नी और भांजी की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच जारी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान सूरज आग बरसा रहा है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। पिलानी में 47, जोधपुर में 46.6, जैसलमेर और चूरू में 46.4, कोटा में 45.4, बाड़मेर, फतेहपुर शेखावाटी में 45, अलवर में 44.8 और लूणकरणसर में 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दोपहर बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करती पर्वत करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध की घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है, यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है। और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी के की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है। और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का

दृढ़ करते रहने में सक्षम है, किंतु वे परदेशी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं, उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वती गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नजारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था, उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे, जो गीत अभी आपने सुना, और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मंजूर सुल्तानपुरी के बोल थे, उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है, किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं, जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एस एच बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, कश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओ हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहां कुछ गांवों में लवा, पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक, गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो जरूर चाहिए, क्योंकि ये चीजें हाथ से बनी हुई होती हैं, और इन चीजों को खरीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोजगार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीजें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत जरूरी होता है। एक श्रोता लिखती है कि आज मौसम पहाड़ों, चांद, रास्ते, परदेसी, बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियां और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं। पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोताओ, और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं, तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओ, तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों से मिलना, मनमोहक दृश्य यकीनन सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

0: है हो मुझे देख कर आपका
1: जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओ तो बड़े ही अच्छे लगते हैं और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसी ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जहाँ ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओ कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसी ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें जरूर बताएं। और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं।

जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है। दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार

0: ले बताते बारात लेके आते, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले।
1: संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती है। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दीयों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो। पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है, आवाज आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहां जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती है कि हिमालय की पीर पंजाल की

बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए

गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान

अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है, वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गांव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है, ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थी। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ। मुझे पहाड़ों पर जाना, वहाँ घूमना, वहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगांव, शिलांग और खजियार, बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओ, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें या

वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीजों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें जरूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं, और अगर हम बात करें शिमले की, बात करें या फिर हम बात करें मसूरी की, बात करें कश्मीर की, बात करें या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नजारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का, वो पहाड़ उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मजा आता है और वहां की शीतलता मन को सुकून पहुंचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोताओं, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है, वैसे

चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़ा ही बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियां उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में। जी हाँ, दो डब्बा बेटा शिखर का जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

आप कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरी सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

मेरा ठिकाना ये संगा गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है संवेदना पर। आज के आधुनिक दौर में हमारी संवेदनशीलता कहीं खोसी गई है। हमें इंसान बनाने वाली वो भावनाएं, वो संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनहीन हो गए हैं कि हमें AI कहना गलत नहीं होगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है

0: होता है।
1: उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग करके ही भोग करो। जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म ही हो गई हो। व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को जीवन देने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं।

संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाएं, तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं जिसे फिर आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट्स की माने तो जो हमें मार नहीं पाता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

0: सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी

0: नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमान

0: निर्मित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।

0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: बोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना कर।
1: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोताओ, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य जवानी।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है, क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना
1: है, बस सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए,
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर इसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद ही
0: फंस गई थी
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पे पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार, कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा से रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज इसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: मुबारकबाद देते हैं।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
1: जी।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये,
1: जब है ना जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही इतना आनंद की अनुभूति होती है ना, फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है। वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश रहते हैं हमें ना उनके काम में,
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है, और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, जैविक तरह की उन्होंने खेती की।
0: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेलम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती है, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
1: और चेलम्मल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेलम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी,
1: देखिए
0: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षक की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का

0: साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं
1: गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है.
1: बिल्कुल. वो तो पता चल जाता है चेहरे को देख के.
0: कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए.
1: ये तो होता है, ये तो होता है.
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा. पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है. और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो. और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है.
1: उन्हें उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं. जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ.
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगते हैं, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है. बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं. जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं. जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है. उनके प्रयास की तारीफ करें परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है. कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की. प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं. इससे बच्चों में लगन बढ़ती है. और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूँ, करता कुछ नहीं है. तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है. उन्हें सिखाए, और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए.
1: बिल्कुल. और लेकिन उस चीज को लेकर इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है. इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े. तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए.
0: क्या बात है,
1: ताकि हमारे आगे कर सकें.
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती, तुमसे अच्छा कोई नहीं.

0: ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए। उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की वजह अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं। हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखे कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है, है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।

0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया, और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है, तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है, आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था, मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल, और श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने देखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी पढ़ाई नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं, और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल, और एक और जो श्रोता हमारे वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल, वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर पड़ता है।
0: और ये जो गेमिंग जो है जो होते हैं ना इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं, पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
1: जी कोई नहीं,
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगा

0: या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत

0: बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज खत्म भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी, और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई,
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी,
1: तो कभी कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: जो मोबाइल टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे की टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, ऊंची जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करिए, यदि 2 एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखे और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखे, यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें और कई सारी बाधाओं से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिखकर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है। तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी आपने। और एक हमारे दोस्त होते हैं जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए।
0: बिल्कुल, उसका ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और आप क्या करना चाहिए।
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती आज की मुलाकात
1: बस इतनी
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका अनियालब सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी।

0: सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं सीआरपीएफ की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये मैं एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो आप किन शब्दों में सीआरपीएफ को परिभाषित करना चाहते हैं?
0: सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज सीआरपीएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है सीआरपीएफ। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे बीएसएफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, सीआईएसएफ वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो सीआरपीएफ ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक सीआरपीएफ ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज सीआरपीएफ ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का सीआरपीएफ ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये नल मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो आपको क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में अब तो इंफॉर्मेशन

0: की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीजें अवेलेबल है। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प थोड़ी अपनी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं
1: जी। तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नजर बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है
1: जी। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस
1: जी। तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं
1: जी। तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फ़ोन के माध्यम से, लोगों ने बताया तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह बहुत खुशी के भाव थे। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति

0: जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जो अपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व तो एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: अपने हाँ
1: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है, शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज

0: हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को एक अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना।
0: क्या बात है,
1: तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52

0: ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में, ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था, ये लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब ही रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: क्या
0: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं।

0: वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज के दौरान किया है।
0: जी
1: बिल्कुल। तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपने श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसे कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था, तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ के ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है।

0: जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। कैसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं आप। एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट

0: वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत। बिल्कुल, वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी, वो कारवां आज तक कायम है। क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशंस पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ आप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूँगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूँगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र में बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती है। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां

0: हम आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापिस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा मीनाका गीत माला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल जी। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
0: बिल्कुल
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब हमारे स्थानीय कार्यक्रम प्रारंभ होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि वो दिल में घर बना लेती हैं।
1: कुछ सपने सिर्फ रातों में नहीं आते, वो आँख खुलने के बाद भी जीने की वजह बन जाते हैं।
0: आज का युवा सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो नई सोच है, नई उम्मीद है और बदलते भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।
1: दोस्तों, कभी किताबों के पन्नों में, कभी संघर्षों की राहों में, तो कभी अपनी छोटी सी कोशिशों में हर युवा लिख रहा है एक नई कहानी।
0: और उन्हीं कहानियों, उन्हीं जज्बातों और उन्हीं सपनों को आवाज देने आया है आपका अपना कार्यक्रम
1: युवाणी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, आपके दोनों रेडियो दोस्त, मैं आरजे लक्षता
0: और मैं कुणाल,
1: जहां बातें होंगी दिल से, मिलेगी प्रेरणा हर पल से और हर एहसास जुड़ेगा आपसे, यानी कि हमारे प्यारे श्रोताओं से।
0: तो अपने सपनों की धड़कनों को थोड़ा और तेज कर लीजिए,
1: क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक ऐसा सफर जहां आपकी सोच ही आपकी पहचान बनेगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की शाम का आगाज और सुनाते हैं आपको आज की शाम का ये पहला बेहद खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवानी में, जहां आज आपसे रूबरू हो रहे हैं आपके दो रेडियो दोस्त। मैं रेडियो दोस्त लक्षिता,
1: मैं आपका रेडियो दोस्त कुणाल।
0: दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, खुद को बेहतर बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी हम बेहतर बनने और बेहतर दिखने के बीच का फर्क भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने लक्षिता। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें स्मार्ट समझें, उनकी बातों को नोटिस करें और उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हों।
0: और सभी लोग कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस में लग जाते हैं कि सब लोग उन्हें नोटिस करें, वो अट्रैक्टिव लगे, वो हाईलाइट हो। लेकिन जब दिखावे का प्रेशर बढ़ जाता है ना कुणाल,
1: बिल्कुल,
0: तो इंसान सीखने से ज्यादा साबित करने में बिलीव रखता है, और हम ये चीजें देखते भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, वहीं से शुरू होती है वो गलती जहां समझदारी कम और फेकनेस ज्यादा दिखने लगती है, जो कि गलत है।
1: बिल्कुल। और आज के हम सेगमेंट, आज के संवाद में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि स्मार्ट दिखने के चक्कर में कहीं हम मूर्ख तो नहीं दिख रहे।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दोस्तों असली स्मार्टनेस आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि सोच को गहरा बनाने में होती है।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, और वो स्मार्ट किस तरह से दिखता है, वो कभी अपने कपड़ों के थ्रू स्मार्ट दिखना चाहता है, कभी वो इंग्लिश बोलकर अपनी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर स्मार्ट दिखना चाहता है, और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होती हैं उनके थ्रू भी हम स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली सोशल मीडिया पर जो हमारी लाइफ होती है, हम उसे एक सर्टन वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को लगे कि दैट वी आर एंजॉयिंग, बट द रियलिटी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है।
1: बिल्कुल।
0: और लोग ये समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि सब क्रीमी क्रीमी वर्ल्ड में जो होता है वो रियलिटी होती है।
1: बिल्कुल।
0: जो कि गलत है, और लोग दूसरों की देखा देखी में खुद भी कहीं ना कहीं उसी वर्ल्ड में खो जाते हैं। और यहीं से दोस्तों शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसे हम कहते हैं फेकनेस की जर्नी।
1: बिल्कुल।
0: तो आप दिखना स्मार्ट चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मूर्ख यानी कि पागल बन जाते हैं, और इसी चीज को आज हम आपको समझाने आए हैं। यहाँ तक कि लोग बिना किसी जानकारी के भी हर विषय पर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं और अपनी राय देने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है।
1: बिल्कुल। और लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या स्मार्ट दिखना है और सच में समझदार होना है, ये दोनों एक ही बात है?
0: बिल्कुल अलग बात है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार हम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका हमें खुद मतलब पता नहीं होता। बहुत सी बार मैंने भी ये चीजें नोटिस करी है कि लोग अक्सर ट्राई करते हैं कि वो ज्यादा बोले।
1: हाँ, वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं।
0: हाँ, लोग सुनने से ज्यादा बोलने में बिलीव रखते हैं।
1: हाँ।
0: जबकि ऐसा होता है कि क्या पता सामने वाला आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो।
1: हाँ, और कई बार ऐसा होता है, हम जो सामने वाला होता है, जो उन्हें सुन रहा होता है
0: जी,
1: उन्हें पता होता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये उसको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। तो स्मार्ट दिखने के बजाय हम उल्टा मूर्ख दिखते हैं।
0: वही वाली बात हो गई कि जो नॉलेजेबल होता है, जिसके पास नॉलेज होती है वो समझ जाता है, और जिसके पास नहीं होती, अक्सर ये भी डिफरेंस हम देखते हैं कि जो जिसको ज्यादा पता होता है, एडुकेटेड होता है, वो चुप ही रहते हैं।
1: वो चुप ही रहते हैं।
0: समझदार लोग चुप रहते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो बोलते रहते हैं। तो हमें सुनना आना चाहिए, लोगों को समझना आना चाहिए, और समय समय पर बोलना आना चाहिए, क्योंकि जो हर वक्त बोलता है उसकी भी वैल्यू उतनी नहीं हो पाती है।
1: बिल्कुल।
0: और असली समझदार इंसान वो नहीं होता जो हर सवाल का जवाब दे दे, जो कि मैंने अभी बोला, बल्कि वो होता है जो ये कह सके कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ या मैं सीखने की इच्छा रखता हूँ।
1: बिल्कुल, ये तुमने एकदम सही कहा लक्षिता, कि मैं सीखना चाहता हूँ। उन्हें पता है कि उन्हें ये नहीं आता है, और वो अपनी इस ईमानदारी को इस बात से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारी क्वालिटी है, ये हमारे ये लोग जानते हैं कि स्मार्टनेस से भी ज्यादा जो हमारी ऑनेस्टी है, हमारी ईमानदारी है, इससे वो ज्यादा इम्प्रेस होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इसीलिए दोस्तों याद रखिए, सादा होना कमजोरी नहीं है, सीखते रहना बेवकूफी नहीं है।

0: और हर समय खुद को साबित करना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो पूछ लीजिए, अगर गलती हो जाए तो मान लीजिए,
0: इजी,
1: क्योंकि यही आदत इंसान को सच में बड़ा बनाती है।
0: क्योंकि स्मार्ट दिखने से ज्यादा जरूरी है समझदार बनना, आपके विचारों से भी और आपके भावों से भी। दोस्तों, दिखावा कुछ समय के लिए आपको तालियां दिला सकता है या फिर झूठी तारीफें दिला सकता है, लेकिन सच्ची समझ आपको उम्र भर इज्जत दिला सकती है। तो फैसला आपके ऊपर है, स्मार्ट बनिए, दिखिए भी, लेकिन दिल से भी स्मार्ट बनिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस प्यारे से टॉपिक के बाद जहां हमने ढेर सारी बातें की, आइए ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में। सुनाते हैं आज की शाम का ये दूसरा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, मोटिवेशन की ज़रूरत तो हम सभी को होती है, परंतु मोटिवेशन के साथ प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे प्रोग्राम युवाणी में डॉक्टर प्रदीप सिंह गौड़ विद्यार्थियों को गाइड कर रहे हैं कि विद्यार्थी सफल कैसे हों।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप सिंह गौड़ गत 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, जिसमें स्कूली शिक्षा खास तौर से है। मुझे राष्ट्रपति द्वारा तथा शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो चुका है तथा हाड़ौती के क्षेत्र के लिए तथा राजस्थान के लिए मैं समन्वयक कोऑर्डिनेटर का काम भी कर रहा हूं। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि विद्यार्थी सफलता कैसे हासिल करें। विद्यार्थियों को सफल होने के लिए उनके पीछे समाज का, उनके माता पिता का, स्कूल के शिक्षकों का और जितना भी एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, जितना भी लोगों की मौजूदगी है, उन सब का बड़ा योगदान रहता है। तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी की, ताकि विद्यार्थी अपना जो उद्देश्य है, ध्येय है, उस पे सफल हो। हम सफलता का क्या महत्व है जीवन में, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सफलता का अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगा। सफलता का मतलब केवल टॉप करना, अच्छे अंक लाना, खूब पैसे कमाना, शोहरत पाना, ये सब उसी के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर अपने मूल्यों पर टिके रहना, एक अच्छा इंसान बनना और दूसरों पे सकारात्मक प्रभाव छोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण सफलता का एक मापदंड है। और इसी में हम आगे बढ़ते हुए बच्चों को कैसे सफल होना चाहिए जीवन में, खास तौर से 5 साल से और 17 साल, यानी जो कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12वीं तक का समय होता है, जब बच्चों में सबसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज, हमारे भारतीय संस्कार, परिवार के संस्कार, ये सब डल जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज को तय करना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। हर विद्यार्थी को अपना उद्देश्य तय करना चाहिए और उसमें माँ बाप का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। छोटी बड़ी दोनों तरह के लक्ष्य बनाइए। उदाहरण के तौर पे कि मुझे गणित में 100 में से 100 अंक लाने हैं और 5 वर्षों में या 10 वर्षों में यहां से मुझे एक सफल इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए अपना टारगेट जो है अपने टेबल पे, जहां भी आप व्यवस्था से पढ़ते हैं घर पे, उसमें सामने ये लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप उसको बार बार देखते रहें और आपको वो बार बार याद दिलाता रहे कि मेरा उद्देश्य ये है। नियमितता और अनुशासन, रेगुलर स्टडीज डिसिप्लिन तरीके से, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखने में आया है कि बच्चे थोड़े दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, फिर मेहनत करने लगते हैं, तो वो एक नियमित अनुशासन से मेहनत नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बच्चों को सफलता नहीं मिल पाती है। तो मेरा ऐसा मानना है और पिछले 32 सालों का जो अनुभव है कि बच्चे अगर नियमित रूप से अनुशासन से पढ़ाई करते हैं,

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, खेलकूद में रुचि लेते हैं और साथ ही और अन्य गतिविधियां कोकुरुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है उनके जीवन को, उनके कैरेक्टर को निखार करने में। आप योजनाएं बनाइए और प्राथमिकता तय कीजिए। हर दिन हर सप्ताह का रूटीन बनाइए, कठिन विषयों को प्राथमिकता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले की आदत अपनाए, समझकर पढ़ना, याद रखना, उसको लिख लिख के याद करना। अक्सर देखने में आया है कि बच्चे बिस्तर पे लेट के पढ़ाई भी करते हैं, जो कि सरासर गलत है। बच्चों को टेबल कुर्सी का उपयोग करना चाहिए घर पे और फिर पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल में जो भी पाठ्यक्रम, जो भी चैप्टर, जो भी यूनिट पढ़ाया जाता है, उसको डेली अपने घर पे आके कंप्लीट करें, याद करें, समझकर आगे पढ़ें। उदाहरण के तौर पे नोट्स भी बनाएं और बुलेट पॉइंट्स बना करके उनको इलैबोरेट करें। गलती करते हैं, कहीं पे गलती होती है तो उससे सीखें। ये बहुत बड़ा एक जीवन का गुरु मंत्र है जो मैं आज आपसे बता रहा हूं कि आप गलती, हर इंसान गलती करता है, और गलती से अगर हम अपने आप को सीख लेते हैं या उसको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, या हम उस गलती से अपनी जो गलतियां होती हैं उससे सीख करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो गलती हमारे लिए एक वरदान का काम करती है। समय अनमोल है, सोशल मीडिया और बेकार की बातों पे बिल्कुल भी हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखना चाहिए। तो समय का उपयोग बहुत बहुत जरूरी है। हमारे पास रोज के केवल 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से बच्चा कम से कम 7 से 8 घंटे उसको साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, ताकि अगले दिन वो एनर्जी के साथ काम कर सके। समय पे सोएं और समय पे उठें सुबह जल्दी, ये एक बहुत अच्छा नियम है जो पुराने गुरुकुल समय से ही चला आ रहा है और इसको हम अपने तरीके से अपने जीवन शैली में उतारें। अच्छी नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से याददाश्त भी अच्छी होती है, ऊर्जा बेहतर होती है। तनाव को कम करने के लिए गहरी सांसें लें, ये छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में लें। हम ऐसा नहीं है कि हम 3 घंटे लगातार पढ़ें, हम आधा घंटा पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें, 10 मिनट का ब्रेक लें और फिर पढ़ें। आप अच्छे अनुभव शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, ये बहुत जरूरी। अक्सर देखने में आया है कि माँ बाप अपने आसपास के स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिला देते हैं, वहां पे न वो ये देखते हैं कि इस स्कूल की मान्यता किससे है या नहीं है मान्यता, या कैसे आगे चल रहा है स्कूल, इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और आगे चल करके 6ठी या 7वीं या 8वीं कक्षा में फिर उस चीज को वो देखना पसंद करते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती। तो मेरा सभी अभिभावकों से, माँ बाप से आग्रह है कि जब आप स्कूल में दाखिला कराएं तो अपने कुछ पॉइंट्स बना के स्कूल में लेके जाएं। स्कूल के चयन के वक्त इन चीजों का ध्यान रखें कि वो कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उस बोर्ड की वेबसाइट पे जाके उसको चेक करें कि वास्तव में मान्यता ले रखी है या नहीं ले रखी है, अनुभवी शिक्षक हैं नहीं है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का कैसा है, खेलकूद गतिविधियां वगैरह, ये सारी चीजों को चेक करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी बच्चे को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। स्कूल का चयन जो है ये बहुत बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि वहां से बच्चे की नींव शुरू होती है और अगर बच्चे की नींव स्ट्रांग होगी तो आगे चल करके वो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा जीवन में, उसको सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं कर सकता हूं, मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूं और मुझे सफलता मिलेगी, इस चीज पे पूरा जोर दें। और अगर ये आप एक बार इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। लगातार सुधार की ललक रखें, हर महीने अपने लक्ष्य और रणनीति की समीक्षा कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुशियां मनाइए, यह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप अगर कोई बच्चे को स्कूल में या किसी भी और जगह उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसको बड़ा छोटे तरीके से लेते हैं कि नहीं ठीक है बेटा, आगे चल के जब जीवन में कुछ बन जाओगे तब बात, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को छोटे से छोटी कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसका आप उसको एनकरेजमेंट दीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, तभी बच्चा आगे उस विषय में या और विषयों में आगे बढ़ता है। बच्चे को सामाजिक रूप से भी हमें डेवलप करना है, उसकी मानसिकता को

डेवलप करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे अन्य गतिविधियों में भी भाग लें, जैसे म्यूजिक हुआ, ड्रामा हुआ, इवन कोई ऐसे स्कूल्स हैं, कई स्कूल्स हैं जिनमें एनसीसी, स्काउट गाइड और ये सब है, बच्चों को उसका पार्ट बनाइए। वहां बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, एक अनुशासन में रहता है और अपने आप को घर में आकर के भी अनुशासित करता है, एक समयबद्ध तरीके से पढ़ाई करता है। तो इन चीजों का जीवन में बहुत बहुत उपयोग है। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जहां पे बच्चे को हम शिक्षा दिलवा रहे हैं, जिस भी स्कूल में दिला रहे हैं या जिस भी संस्था में दिला रहे हैं, वहां पे प्रयोगशालाएं अच्छी हैं, पुस्तकालय हैं, सुविधाएं हैं, सर्वांगीण विकास वहां बच्चे का होगा या नहीं होगा, बिजली की उपलब्धता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने उपलब्ध हैं आजकल, क्योंकि कंप्यूटर का एआई का जमाना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को ये सारी सुविधाएं वहां भी मिलें। तो इन सब चीजों को जब हम एक संपूर्ण जगह पे, एक जगह पे देखते हैं इसको समायोजित करके, तब हमें लगता है कि बच्चा सही दिशा में कार्य कर रहा है। बच्चों को रोज का नियमित रूप से पढ़ाई इस तरह से करें बच्चे के नियमित रूप से अपने वहां स्कूल में या अपनी संस्था में जो पढ़ाई की जा रही है उसको आकर के घर पे रिवाइज करें, याद करें और अपने बुलेट पॉइंट्स बनाएं, ताकि इम्तिहान के दिनों में वो उस चीज को, केवल आपको बुलेट पॉइंट ही रिवाइज करने हैं और आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है, एक टेक्निक है, जिससे आगे चल के आप जीवन में सफल हो सकते हैं, एक ऐसे स्थान पे पहुंच सकते हैं जीवन में जहां आपको खुद को अपने आप पे गर्व हो, आपके परिवार को गर्व हो, आपकी संस्था को गर्व हो और देश का नाम हो। तो हम आज इस बात पे ये चर्चा कर रहे थे कि बच्चों को जीवन में क्या करना चाहिए जिससे सफल हो, माता पिता को उनकी क्या मदद करनी चाहिए जिससे वो बच्चा सफल हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे के जो साथी हैं या उसकी जो कंपनी है वो ऐसी कंपनी ना हो जिसमें बच्चा आगे चल करके हमें खुद को ये लगने लगे कि ये गलत कंपनी में जा रहा है बच्चा और सही तरीके से आगे उसका उत्थान या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जिस विषय में बच्चे को रुचि हो उस विषय में ही बच्चे को आगे बढ़ाने का हमें संकल्प लेना चाहिए और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। माता पिता को अक्सर देखने में आया है कि माता पिता बच्चों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढालना चाहते हैं, जबकि वो सरासर गलत है। बच्चों को उनकी इच्छाओं के या उसकी रुचि के अनुसार ही उसको विषय दिलवाना चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे चल करके जीवन में बहुत कुछ कर सके और उसी विषय में आगे बढ़े जिसमें उसकी रुचि है। अक्सर देखने में आया है कि माता पिता अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोप देते हैं और फिर बच्चा निराश हो जाता है और बच्चा उसमें उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं और आगे चल के बच्चे को बड़ा डिप्रेशन या नकारात्मक विचार आते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, बच्चों को जब स्कूल में डालते हैं तो हमारी जिम्मेदारी वहां खत्म नहीं हो जाती। हम अच्छा स्कूल का चयन भी कर रहे हैं और बच्चे को बस स्कूल में डाल दिया, वहां रेगुलर पीटीएम्स होती हैं। माता पिता अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है कि वो पीटीएम्स को जाके अटेंड करें। पीटीएम्स में अपने बच्चे के बारे में जो बताया जा रहा है उसको शांतिपूर्वक सुने, जो सुझाव दिए जा रहे हैं उन पे अमल करें और साथ ही बच्चा जो वहां पे जिस तरह से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसी चीज पे हमें आगे चल के एक्शन लेना चाहिए, ताकि बच्चे में सुधार आए। इसी चीज के लिए या इसी बात के लिए ये अभिभावकों की मीटिंग्स होती हैं वहां पे। तो ये मेरा आग्रह है सभी माता पिताओं से, बच्चों को इम्तिहान के दिनों में बहुत जरूरी है कि बच्चों को संतुलित आहार दिया जाए, व्यायाम पे ध्यान दिया जाए, बच्चों को समय पे स्कूल या जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां छोड़ा जाए। इन सब बातों पर ध्यान देकर के बच्चों को हम सफल बना सकते हैं। और एक बार बच्चा अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन ले लेता है तो बच्चे का जीवन और एक कोर्स वहां से उसको मिल जाता है, लाइन ऑफ एक्शन मिल जाती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध यही है कि अपना खुद का मार्ग बनाएं, खुद का मार्ग बना के आपके पीछे पीछे लोग चलें, ऐसा होना चाहिए और ऐसा

माता पिता भी चाहते हैं, हमें सबको गर्व भी होगा। अंत में मैं ये कहूंगा, असफलता को कभी भी आप डिप्रेशन का या दिमाग में एक वो बैठाने वाली बात कि मैं तो असफल हो गया अब आगे क्या करूंगा, असफलता को सफलता की सीढ़ी मान के आगे बढ़ें। इस बात से मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। तो रुक

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की, जो कि समर्पित है आज महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक और समाज सुधारक विनायक दामोदर
1: सावरकर जी, यानी कि वीर सावरकर जी की जयंती को। दोस्तों, हर साल 28 मई को पूरे देश में वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। आइए उनके जीवन और योगदान को याद करें।

0: आवाज उठाई और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित भी किया।
1: दोस्तों, उन्होंने न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि वो एक महान लेखक और विचारक भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ने देशवासियों में आजादी की एक नई चेतना जगाई थी।
0: देशभक्ति के कारण उन्हें काला पानी की सजा दी गई और अंडमान की सेल्यूलर जेल में वर्षों तक कठोर यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी उनका हौसला कभी नहीं टूटा।
1: दोस्तों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम त्याग, साहस और समर्पण से बनता है।
0: दोस्तों, वीर सावरकर जी के एक प्रेरणादायक विचार को आइए आपसे साझा करते हैं। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमें मिली नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए अनगिनत बलिदान दिए गए हैं।
1: दोस्तों, वीर सावरकर जयंती केवल एक स्मरण दिवस नहीं बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का अवसर भी है।
0: हम सभी उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और अपने देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि आज जो हम करेंगे वो कल के लिए काफी लाभदायक होगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगूर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ

0: दोस्तों, खुशियों की दस्तक और अपनों का प्यार लेकर आते हैं हमारे त्यौहार। त्यौहार का मतलब सिर्फ तारीखें नहीं होती, त्यौहार का मतलब है घर की वो रौनक जो अपनों के साथ आती है, जो अपनी बचपन की यादें लटाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने लक्षिता। आज हम लेकर आए हैं बेहद बेहद खास सफर, हमारे त्यौहार। तो आज फिर जीते हैं उन यादों को, उन परंपराओं को जो हमें एक दूसरे से और हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। कुछ रस्म रिवाज जिनके पीछे है बहुत बड़े कारण और बहुत महत्वपूर्ण योगदान।
0: दोस्तों, आज हमारे त्योहार सेगमेंट में हम मना रहे हैं ईद उल अजहा। दोस्तों, इस त्योहार को कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है और ये इस्लाम के दो सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे कुर्बानी का त्योहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको हम आगे बताएंगे।
1: तुम तो बीच में सस्पेंस छोड़ दिया। दोस्तों, ईद उल अजहा इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने दुलहिज्जा के 10वें दिन आता है। 3 दिनों तक का ये त्योहार मनाया जाता है जिसे तशरीक कहते हैं।
0: दोस्तों, इस दिन से जुड़ी एक बहुत मुख्य घटना ये भी है कि हम इस दिन का महत्व जो हमें बताती है, जिसे हम जान पाते हैं इस दिन का महत्व। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने सपने में देखा कि अल्लाह उनसे उनकी सबसे प्रिय चीज, कीमती चीज, कुर्बानी की कुर्बानी मांग रही हैं। उन्होंने बार बार वही सपना देखा और ये समझ गए कि ये अल्लाह की आज्ञा है।
1: और उनकी सबसे प्रिय चीज पता है क्या थी? उनकी सबसे प्रिय चीज थी उनका बड़ा बेटा इस्माइल। जब वह अपने बड़े बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए तो उनकी अटूट निष्ठा और त्याग को देखकर अल्लाह बड़े प्रसन्न हुए और फरिश्ते जिब्रील को हजरत इब्राहिम के पास भेजा और उनके बेटे की जान बच गई।
0: ये त्योहार हमें सिखाता है कि इंसान को अपनी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अपनी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ना बेहद ही कठिन काम है, पर अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से काफी मजबूत हैं।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों त्योहार का असली मजा तो परिवार के साथ ही आता है, है ना लक्षिता?
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं एक मौका आ जाता है जब हम परिवार के साथ काफी सारा समय व्यतीत करते हैं, और ये हमें काफी सारी खुशियां भी देता है
0: और काफी सारे अनमोल मोमेंट्स भी देता है जो हम अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं
1: और जो लाइफ टाइम हमारी मेमोरीज में फिट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, इसलिए इस त्योहार पर भी सभी भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ मिलकर भोजन करते हैं,
1: जिसे दावत

0: गरीबों को, इन सबको सहायता करना, ये भी एक मदद का प्रतीक है, ये भी एक ईद मनाने का जरिया है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं, कहीं ना कहीं यही मौका होता है जब हम दिल खोल कर उनकी सहायता कर सकते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं।
1: और ये हमें ये भी मैसेज देता है लक्षिता कि कहीं ना कहीं दूसरे भी हमारी एक फैमिली का ही हिस्सा है, वो भी कोई अलग नहीं है,
0: हम सब एक हैं,
1: सब एक हैं, हम सब एक हैं।
0: ये काफी अच्छी बात तुमने कही, और मैं तो कहूंगी कि कोई दिन कोई त्योहार नहीं होना चाहिए किसी की मदद करने के लिए। हर दिन आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, बस आपका दिल बड़ा होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ताकि कोई आपके सामने आ रहा है मदद के लिए तो आप करिए मदद। मदद करना काफी अच्छी बात होती है, कहीं ना कहीं उससे आपको ही खुशी मिलती है, और वो खुशी दुनिया की लाखों करोड़ों खुशियों से कई गुना ज्यादा होती है। तो अगर आपने अभी तक किसी की मदद नहीं करी है तो एक बार कर कर देखिए और उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, उसके बाद आपके दिल को जो सुकून मिलेगा वो वाकई में काफी ज्यादा खुशकिस्मती लाएगा आपके जीवन में।
1: उसे वो ऐसी खुशी होगी जिसे आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही कहा। तो आगे बताओ कुणाल, और क्या क्या होता है ईद के दिन?
1: हाँ, आज के दिन और ईद में ऐसा होता है कि सुबह सब जल्दी उठकर एक साथ नमाज अदा करते हैं। और दोस्तों, ये जो त्योहार है ये त्याग और बलिदान का त्योहार है, जो हमें सिखाता है कि इंसान को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ईश्वर हमारे सपने में आकर हमसे कहें तभी हम किसी तरह का त्याग करें। रोजमर्रा के जीवन में हमारे पास काफी सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमें त्याग करना पड़ता है, जैसे कि,
0: और कुणाल त्याग करना तो आना चाहिए, है ना। जैसे कभी कोई तुम एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हो कि हम कुछ खाने का बना रहे हैं और उसी वक्त कोई ऐसा हमारे घर का जो दिन भर से ऑफिस गया है या मेहनत करके घर लौटे हैं और हमारी काफी इच्छा है वो खाने की जो हमने खुद के लिए बनाया है, लेकिन वो आकर कह दें कि मुझे भूख लग रही है, तो फिर हम क्या करेंगे?
1: बिल्कुल, अब यहाँ पर हमारे पास दो विकल्प होते हैं।
0: या तो हम जो खुद के लिए बनाया वो खुद ही खा ले, या हम उन्हें खिला दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्याग।
1: ये त्याग,
0: ये छोटे छोटे त्याग होते हैं जीवन में जो हम करते हैं, और हमें करना आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये गलत होता है। दूसरों के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है।
1: बिल्कुल लक्षिता, और उस टाइम पर जब अगर ऐसा सिचुएशन आएगी तो उस टाइम पर हमें ये त्याग करना काफी मुश्किल तो लगता है, काफी कठिन होता है, पर अगर हमने कर लिया तो उसके बाद हमें जो खुशी मिलती है वो खुशी बहुत बहुत अच्छी होती है,
0: बहुत ही अलग होती है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा कभी मम्मी बुला रही है तो अपना काम छोड़कर, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका सोशल मीडिया या स्क्रोलिंग या गेम, बीच में उन सबको आप त्याग कर पाए तो इसे भी त्याग कहते हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण मैं दे रही हूँ जिससे आपको समझ आए कि त्याग होता क्या है। जरूरी नहीं कुछ बड़ा करना हो, छोटी छोटी चीजों का त्याग भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है और एक हिम्मत देता है लाइफ में कुछ भी फेस करने के लिए। कोई काम हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, तो यहाँ आलस का एक त्याग जो सबसे ज्यादा कठिन होता है कि हमें आलस आते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए, और हमारी दैनिक जीवन से जुड़े हर चीज को हमें अच्छे से निभाना चाहिए जो हमें और मजबूत बनने का मौका दे। तो दोस्तों, आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से ईद की काफी सारी शुभकामनाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

के पीछे एक लंबा सा संघर्ष छुपा होता है। जिंदगी में मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर इंसान अपने सपनों को सच करना चाहता है तो उसे मेहनत खुद करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरों के सहारे सिर्फ रास्ते मिलते हैं, मंजिल नहीं। दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में जिससे आप जानेंगे कि असली मेहनत जो हम खुद करते हैं उसी का फल हमें अच्छे से मिलता है, क्योंकि दूसरे लोग जो हमें रास्ते दिखाते हैं वो हाँ माना कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन जो मेन रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारे खुद के हार्डवर्क का मिलता है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है संघर्ष की कहानी। प्रेरक प्रसंग में हम बात करेंगे एक खूबसूरत कहानी की जो आपको बताएगी कि संघर्ष करना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए।

0: दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति को अपने बगीचे में एक तितली का कोकून मिलता है। उसने देखा कि कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है और तितली उस छेद के बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है।
1: वो व्यक्ति बड़ी रुचि से उसे घंटों तक देखता रहा, लेकिन तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पा रही थी। तितली बहुत देर से संघर्ष कर रही थी, फिर अचानक वो रुक गई, जैसे उसने हार मान ली हो।
0: और उसी वक्त उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि तितली की मदद करनी चाहिए। उसने एक कैंची ली और कोकून को थोड़ा और काट दिया ताकि छेद थोड़ा बड़ा हो जाए और तितली उस छेद में से आसानी से बाहर आ जाए। और ऐसा हुआ भी, लेकिन उसका शरीर बहुत सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे थे और कमजोर थे।
1: वह व्यक्ति यह सोचकर उसे देखता रहा कि अब वो उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तितली पूरी जिंदगी जमीन पर ही रेंगती रही और कभी उड़ नहीं पाई।
0: दोस्तों, ये हमें, ये जो बात अभी हमने कही, ये जो कहानी हमने सुनी, ये हमें सिखाती है कि मेहनत जो हमारे जीवन में लिखी हुई होती है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे डील हमें खुद करना चाहिए। अब दोस्तों, वो व्यक्ति ये नहीं समझ सका कि उस कोकून से बाहर निकलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है हर तितली को, वही संघर्ष प्रकृति का एक तरीका होता है जिससे तितली के शरीर का तरल उसके पंखों में पहुंचता है। जब वो कोकून को छोड़कर बाहर आ जाती है, छेद करके बाहर आ जाती है, तभी उसके पंख मजबूत और उड़ने लायक बनते हैं।
1: दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम बिना किसी संघर्ष के सफल हो भी जाएं, तो हम अपनी पूर्ण क्षमता को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे।
0: दोस्तों, हमदर्दी हमेशा मददगार नहीं होती। कभी कभी जिन्हें हम प्यार या अपनापन समझते हैं, वे हमारी सहायता के नाम पर हमें वो अनुभव नहीं लेने देते जो हमें लेना चाहिए, जो हमारे विकास के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है।
1: और यदि हम चाहते हैं कि हमारे पंख मजबूत हों, हम भी ऊंची ऊंची उड़ानें भरें और हमें अपने रास्ते में आने वाले कोकून को स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा। अपनी मुश्किलों का सामना हमें खुद ही करना पड़ेगा, उसी से हम मजबूत होंगे।
0: दोस्तों, इसी प्यारी सी कहानी के साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। काफी मजा आया, काफी ढेर सारी बातें हमने करी, काफी सारे प्यारे प्यारे गीत आपको सुनाए। करेंगे आपसे अगली मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आपके दोनों रेडियो दोस्त, मैं लक्षिता,
1: मैं कुणाल।
0: रखिए अपना ध्यान और अपनों का ख्याल और साथ ही सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी आपके अपने चैनल 102.103 आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। थोड़ी देर में हमारे श्रोता आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री

0: मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला नगमा आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से, जिसे गाया है जावेद अली ने, शब्द दिए हैं कौसर मुनीर ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप, और फिल्म संगीत में अगला नगमा हम सुनेंगे लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में, फिल्म दिल तो पागल है का, जिसमें शब्द दिए हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। कार्यक्रम आपकी सेहत में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 प्रातः 8:15 बजे से 9 बजे तक आप सुनेंगे श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार विषय पर जानकारी। हमारे अतिथि विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड। कार्यक्रम में आप विषय पर आधारित अपने प्रश्न भी कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए 2941149। एक बार फिर से सुन लीजिए 2941149। अवश्य सुनिएगा कार्यक्रम आपकी सेहत शनिवार प्रातः 8:15 बजे से 9 बजे तक। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त होती है।

0: बट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप, और अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था रवनराज फिल्म का नगमा बाली ब्रह्मभट्ट पूर्णिमा की आवाज में, जिसमें शब्द थे आनंद बख्शे के और संगीत था विजू शाह का। आइए अब फिल्म संगीत के अगले नगमे की ओर आपको ले चलते हैं, जो कि खूबसूरत सा गाना होने वाला है, तो आइए सुनते हैं।

संजय लीला बंसाली का इसमें संगीत था, एएम तुरस का नगमा ये आपने सुना और पद्मावत फिल्म का ये नगमा था। शिवम पाठक, मुस्तबा अजीज नजा, कुणाल पंडित साथियों की आवाज में थी। आइए अब चलते हैं अगले नगमे की ओर।

रईस फिल्म का अभी आप नगमा सुन रहे थे अरिजीत सिंह हर्षदीप कौर की आवाज में। और आइए अब श्रोताओं, वक्त हो चला है फिल्म संगीत तो यहाँ पे खत्म होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। थोड़ी देर में श्रोताओं आप जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी, पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीट वेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को जल और शरबत पिलाया गया। जैसलमेर में अभियान के तहत भू जल संरक्षण विभाग की ओर से जल संरक्षण शपथ, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जल संरक्षण कार्यों में उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। राजसमंद में उपमुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पानी, बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भरतपुर जिले में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने ये स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के तहत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सह सलाहकारों की नियुक्ति करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान में प्रदेश ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। 24 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में 2 महीनों में राज्य में करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और 35,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि निरामया राजस्थान के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, त्वरित जांच, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, जन भागीदारी, तकनीक और संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा देशभर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहर और कस्बों में सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमादादीच, आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में भी ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में त्योहारी खरीददारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुलपति पद पर रहते हुए अनियमितताएं करने के आरोप में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। राजभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये आदेश राज्य सरकार के परामर्श के बाद जारी किए गए हैं। वहीं एक अन्य आदेश में राज्यपाल ने राजुवास जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को अपने कार्य के साथ साथ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं। वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर नौतपा के दौरान तेज गर्मी का असर बना हुआ है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे

0: से ज्यादा अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं राज्य के 25 से अधिक जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर और भरतपुर में आज दोपहर बाद हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ. राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है।
1: हीटवेव का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन तेज हवाओं के साथ में कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघगर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
0: मानसून के आने से पहले कोटा जिले में वन विभाग ने बड़े स्तर पर पौधा रोपण की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के मंडारा रेंज में इस बार पारंपरिक तरीके के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाने के लिए 5 लाख सीड बॉल तैयार की जा रही है। इन तैयार बीज की गेंदों को ड्रोन और श्रमिकों के माध्यम से जिले के वन क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। इन सीड बॉल्स में अर्जुन, रौंज, खैर और कुमठा जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधों के बीज शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मिट्टी, गोबर और राख के मिश्रण से तैयार ये बॉल्स बीजों को धूप, कीड़ों और पक्षियों से सुरक्षित रखती हैं। बंजर और दुर्गम इलाकों के लिए ये तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। कुर्बानी का प्रमुख इस्लामिक पर्व ईद उल अजहा आज जिले भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह फर्ज की नमाज के बाद से ही विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में शहर की मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। वहीं एमआई रोड और जौहरी बाजार सहित सभी ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। घर घर में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शहर की बकरा मंडियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किया। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिता, संगोष्ठी और कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कल मिशन हरियालू राजस्थान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आगामी मॉनसून के दौरान प्रदेश भर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों और पिछले सालों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की

समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो टैगिंग एवं लाइव फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को लगाए गए पौधों की जीवितता को सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधरोपण को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में जून माह एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य

करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में जून माह एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मलेरिया उन्मूलन की दिशा में जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, मजबूत सर्विलांस और समय पर जांच तथा उपचार सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी जून माह में प्रदेश में व्यापक स्तर पर रोकथाम एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ग्राम स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां, रैली, विद्यालयों में कार्यक्रम, प्रचार कार्यों के द्वारा मलेरिया के कारण और बचाव के उपायों की जनता को जानकारी दी जाएगी। जयपुर में डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा सीधे तौर पर समाज से जुड़ी शिक्षा है। इसका उपयोग विद्यार्थी जरूरतमंद, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने विधि शिक्षा में राष्ट्र और समाज हितों को प्राथमिकता देने और इस दिशा में उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रदेश को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दीक्षा प्राप्त कर 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की डिग्रियां डिजी लॉकर में कंप्यूटर का बटन दबाकर लाइव की। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार को ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण प्रदान किया गया है। ये आमंत्रण उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दिया गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बीते दिनों फिट इंडिया साइकिल संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम कॉमनवेल्थ डे 2030 रखी गई, जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टेडियम परिसर के चारों ओर आयोजित साइकिल रैली रही। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली और कॉमनवेल्थ खेल 2030 के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पहले आज री खास खबर प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित पढ़ेसरिया री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है और राज्य री घनकर ठोड़ा माथे तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रेवन रो पूर्वानुमान।

0: भरतपुर में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पडेसरिया ने आश्वस्त करयो कि सीबीएसई री कानीसू शुरू करीजी ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम बत्ती पारदर्शिता पक्की करने रे लखसू शुरू करीजी है, एक चौखी पहल है। श्री प्रधान नवी दिल्ली माए सीबीएसई रा अहलकारा रे साथे बैठक रे पाछे खबर नवी सासू बणतल माए आ बात कही। सीबीएसई कक्षा बारहवीं री परीक्षा रे पुनर्मूल्यांकन पोर्टल माए ओएसएम माए विसंगतियां और तकनीकी खराबी ने लेर वणा पडेसरिया ने आश्वस्त करयो कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रे चालता सगली शिकायतां रो समाधान करयो जावेला।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा री संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। एनटीए रे मुजब परीक्षावां अबे 31 मई 6 और 7 जून ने राखी जावेली। आज होवण वाली परीक्षा ईद उल अजहा रे कारण पुनर्निर्धारित करीजी है। एनटीए बतायो कि दीतवार ने परीक्षा देवण वाला उम्मीदवार रा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और आने एनटीए री आधिकारिक वेबसाइट सु डाउनलोड करया जा सके है। 6 और 7 जून ने परीक्षा देवण वाला बाकी उम्मीदवार रा प्रवेश पाना भी बेगाई जारी करया जावेला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम रे तहत राष्ट्रीय खेल संघा माए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारारी नियुक्ति करेला। इन पहल रे माध्यम सु राष्ट्रमंडल खेल 2030 री तैयारियां ने चोखो बनायो जा सकेला। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि इन पहल रो लखस विशिष्ट डिजिटल प्रणालियां ने सुव्यवस्थित करनो और होड़ा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरां और खिलाड़ियां री भागीदारी और साचे वकत रे समन्वय खातिर 32 प्रभावी योजना बनावण माए सक्षम करनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान माए खास उपलब्धियां हासिल करी है। 24 मार्च सु शुरू हुआ इन अभियान माए 2 महीना माए राज्य माए करीब 19 लाख लोगों री स्क्रीनिंग करीजी और 35,000 सु 32 नुआ रोगियां री पहचान करीजी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि निरामया राजस्थान रे विजन रे तहत टीबी जड़ी गंभीर बीमारी रे उन्मूलन खातिर स्क्रीनिंग तुरंत जांच जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता रे प्राथमिकता दी जा रही है। वणा कहो कि जन भागीदारी तकनीक और संवेदनशीलता रे साथ है स्वास्थ्य सेवावां मुहैया करार आपा टीबी मुक्त राजस्थान री दिशा माए काम कर रिया हां। कुर्बानी रो तिवार ईद उल अजहा देश भर माए धार्मिक उचास रे साथ है मनायो जा रियो है। प्रदेश माए जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहर कस्बा माए सुवारे ईदगाह और मस्जिदा माए ईद री नमाज अदा करीजी। बाद में लोगां एक दूजे सु गले मिलर ईद री मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजारी नगरी अजमेर माए भी ईद उल अजहा रे मौके माथे नमाज रे पाछे लोगां एक दूजे ने मुबारकबाद दी। और ब्यूरो माणा खबर नवी सु।
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमा दादीच आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: जोधपुर सवाई माधोपुर और सिरोही माए भी ईद उल अजहा रो पर्व हकीकत रे साथ है मनायो जा रियो है। इन मौके माथे बाजारा माए त्योहारारी खरीदारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुलपति पद पर रहता थका अनियमितता रेकार ने आरोप माए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप ने पद सू तुरंत हटाने रा हुकुम जारी करया। राजभवन सू जारी विज्ञप्ति रे मुजब ए आदेश राज्य सरकार रे परामर्श रे पाछे जारी करया गया है। वटी ने एक दूजे आदेश माए राज्यपाल राजूवास जोबनेर रा कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा ने काम रे साथे साथे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु ने अतिरिक्त कार्यभार संभालने रा हुकुम दिया है। वटी ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता

समाचार साथ है मैं संगीता शर्मा और अब है समाचार विगतवार। प्रदेश में चाल रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जा रही है। आ गतिविधियां रो लखस इन अभियान सु 32 लोगों ने जोड़नो और जल संरक्षण रे प्रति जागरूकता बधानो है। इन्हीं कड़ी माए झुंझुनू जिले रा नवलगढ़ माए जन जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। कार्यक्रम माए आया लोगों ने पौधा बांटर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो। भीषण गर्मी ने देखता थका राहगीरा ने पानी और शरबत पिलायो गयो। जैसलमेर माए अभियान रे तहत भू जल संरक्षण महकमारी कानीसू जल संरक्षण शपथ पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर माए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत जिला कलेक्ट्रेट माए कार्यशाला राखी जी। इन कार्यशाला माए जल संरक्षण कामा माए उद्योग जगत स्वयंसेवी संस्थावा और सामाजिक संगठनारी सक्रिय सहभागिता माते जोर दियो गयो। राजसमंद माए उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ने लेर पानी बिजली री आपूर्ति स्वास्थ्य सुविधावा और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री प्रगति तेरी समीक्षा करी। वणा इन अभियान ने जन आंदोलन बनावन री जरूरत माथे जोर दियो।

0: विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रो अतिरिक्त कार्यभार दियो गयो है। और अब है मौसम। प्रदेश रे घनकर ठोड़ा माथे नो तपारे चालता तेज गर्मी रो असर बनियोड़ो है। सगड़ा शहरा माए बदता तापमान और लू रे असर सु जनजीवन प्रभावित हुए रियो है। दिन रे वकत सड़का माथे अघोषित कर्फ्यू जड़ा हालात बनियोड़ा है। लाडला 24 घंटा माए प्रदेश माए सबसु बत्ती तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर माए दर्ज करी जो बठीने राज्य रा 25 सु 32 जिला माए लाडला 24 घंटा रे चालता दिन रो पारो 42 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर दर्ज हुयो। श्रीगंगानगर और भरतपुर माए आज दोपहरा पाछे हल्की बिरखा होने सु लोगा ने गर्मी सु थोड़ी घनी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो के प्रदेश रा पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव दौर जारी रहने री आस है।
1: हीट वेव का ये दौर अभी भी अगले 24-48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन तेज हवाओं के साथ में कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 29-31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघगर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
0: मानसून रे आवन सु पहलिया कोटा जिला माए वन महकमो मोटे स्तर माथे पौधा रोपण री तैयारी शुरू कर दी है। जिले रा मंडाणा रेंज माए इन बार पारंपरिक तरीका रे साथे साथे आधुनिक तकनीक रो प्रयोग कर हरियाली बधाने रो लखस राख्यो गयो है। इन रे तहत दुर्गम और पहाड़ी खेतरा माए हरियाली ने बधाने खातिर 5 लाख सीड बॉल तैयार करी जा रही है। आ तैयार बीज री गेंदा ने ड्रोन और मजूरा रे मार्फत सु जिला रे वन खेतरा माए फैलायो जावेला। आ सीड बॉल्स माए अर्जुन रोंज खैर कमुठा जड़ी स्थानीय प्रजातियां रा पौधा रा बीज भेड़ा है। ध्यान जोग है कि मिट्टी गोबर और राख रे मिश्रण सु तैयार आ बॉल्स बीजा ने धूप कीड़ा और पंछियां सु सुरक्षित रखे है। बंजर और दुर्गम इलाका खातर आ तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित वेरी है। प्रदेश माए 1-30 जून ताई बाल श्रम बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी रे खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलायो जावेला। इन अभियान रो लक्ष्य बाल श्रम और बाल तस्करी जड़ी गंभीर सामाजिक बुराइयां माथे प्रभावी नियंत्रण स्थापित करनो और पीड़ित टाबरा रो पुनर्वास पक्को करनो है। अभियान रे प्रभावी संचालन रे खातिर सगड़ा जिला रा पुलिस अधीक्षका ने हुक्म दिया गया है। अभियान रे तहत होटल ढाबा ईंट भट्टा फैक्ट्रियां रेलवे प्लेटफॉर्म बस स्टैंड धार्मिक स्थल अस्थायी बस्तियां माए रहरिया टाबरारी स्क्रीनिंग करी जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई ने आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। आ इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। इन रे खातिर श्रोता आपरा टोल फ्री नंबर 1800117800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माए जीओवी ओपन फोरम रे माध्यम सु भी विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव काले ताई स्वीकार करया जावेला। अजमेर रा किशनगढ़ एयरपोर्ट सु हवाई यात्रियां रे खातिर इंडिगो जुलाई माह सु 2 नवी उड़ान सेवावां शुरू करन जा रियो है। किशनगढ़ ने दिल्ली और नोएडा सु जोड़न वाली आ नवी फ्लाइट्स रे शुरू होने सु अजमेर किशनगढ़ ब्यावर और आसे पासे री बड़ी आबादी ने बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेली। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा बतायो कि 1 जुलाई सु दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू वेली। आ उड़ान सप्ताह माए 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार ने संचालित करी जावेली। इनरे अलावा 2 जुलाई सु नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू करी जावेली। आ सेवा सप्ताह माए 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार ने संचालित वेली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रे माए भारत केंद्र कानीसु सवाई माधोपुर माए वीर सावरकर जयंती मनाई जी। छात्रपति शिवाजी युवा मंडल री कानीसु राखी जो जयंती जलसे माए सावरकर रे राष्ट्र निर्माण माए योगदान ने याद करता हुआ संगोष्ठी और चित्रकला होड़ समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। होड़ माए विजेतावां ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करियो गयो। जैसलमेर माए भी सावरकर जयंती माथे न्यारी न्यारी होड़ा और संगोष्ठी राखी जी। इन मौके माथे घनी तादाद माए मौजूद युवावां ने पर्यावरण संरक्षण शपथ भी दिलाई जी। और खास खास खबर आखिर में एक कर फेरू सुनो। प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन

0: क्रियामाएं विसंगतियां सुन संबंधित पड़ेसरियां री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है और राज्य री घनकर ठोड़ा माते तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रेवन रो पूर्वानुमान। इन रे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज रहे हैं। अब हमारे किसान बहन भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम न सुन बाला संदा काश्तकार भाई बनिया गताई धनंजय भाई की अडिसु गणी गणी राम राम राम राम जी राम राम कृष्ण भाई बनिया हो काई हाल चाल चा आपका मजा का ही होगा अर हो भी क्यों ना रूणी तपरी च और लपकर गर्मी पड़ रही च सूरज देवता आग बरसा रहा च गर्मी की गहरी जुताई के बाद जब धरती तपच तो यह बड़ी लाभदायक रह च कृष्ण भाई हो क्योंकि इमें जितना भी मिट्टी जनित रोग कारक और हानिकारक बैक्टीरिया रह च वह खत्म हो जाओ च कृष्ण भाई बनिया आज की टर्म पर जल संरक्षण एक बड़ी चुनौती च चाहो अपन पीवा का पानी की बात करा या फिर सिंचाई का पानी की भूमिगत जल को गिरतो स्तर एक बड़ी परेशानी बनतो जा रो और ऐसी स्थिति में जल संरक्षण करबो गुणों ही जरूरी छ भाई बनिया खेती बाड़ी की अगर आपन बात करा तो खेती बाड़ी में जल संरक्षण को मतलब छ का अपने पास जो साधन छ वहां को अपन कुशलता से उपयोग करा और व्यर्थ में पानी न डोला बर्बाद न करा और पानी बचावा का जल को संरक्षण करवा का तरीका छ वह जरूर अपनावा जैसा लेजर समतलीकरण छ लेजर सु समतलीकरण की तकनीक एक नई तकनीक छ भाई बनियाओ अध्ययन सु यो पतो चाल्यो छ कि लेजर द्वारा समतलीकरण करबा पर धान का खेत में 10% और गेहूं का खेता में 10-20% ताई पानी की बचत करी जा सके छ कितनी बढ़िया बात छ देखो गेहूं की फसल में पानी की बचत के साथ साथ 10-15% की ज्यादा उपज मिल छ ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई की विधि भी जल संरक्षण में बड़ी कारगर च कृष्ण भाइयों इमा पानी और पोषक तत्व ड्रिप सिंचाई का माध्यम से फसल ताई पहुंचाया जाओ छ इमा पारंपरिक खेती का मुकाबला में जल की 40-50% ताई बचत की जा सके छ देखो कितनी बड़ी बात छ भूजल रिचार्ज ज्यां बूंद गर वहीं समेट ली की तर्ज पर एक नारो दियो गयो का खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में ई नारा गताई साकार करबा के लेख या गणी जरूरी छे कृष्ण भाइयों का बरसात का पानी को समुचित उपयोग करियो जावे खेता के आसपास छोटा तालाब या फार्म पोंड बनार बारिश का पानी के ताई इकट्ठो करियो जावे जिको उपयोग बाद में पानी की किल्लतो वाप करियो जा सके जल संरक्षण का तो देखो फायदा ही फायदा जे कृष्ण भाई बनियो इमें संसाधना की बचत तो हो ही छ क्योंकि पंपिंग की लागत घट छ और ऊर्जा की बचत हो छ पैदावार में बढ़ोतरी हो छ और पौधानी वहाँ की जरूरत के अनुसार सटीक पानी मिल बासू फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार हो छ भूजल स्तर में सुधार हो छ भाई बनियो जब अपन पानी की बचत करबा का तरीका अपनावा छ तो जमीन के अंदर जो पानी छ उनका स्तर में भी बढ़िया सुधार हो छ कृष्ण भाई बनिया चौपाल कार्यक्रम में बातचीत और भी छ उस पहले सुना चाहिए एक जरूरी सूचना

0: श्रोताओ एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: करसान भाई बहनों, चौपाल में एक बार फिर आपको स्वागत छे। अब सुना चा प्रगतिशील कृषक का अनुभव। जानकारी दे रहा है श्री ओम प्रकाश शर्मा, केशोराई पाटन, जिला बूंदी। किसान बहन भाईओ, आपना चौपाल कार्यक्रम में टर्म टर्म पर विशेषज्ञ फावणा तो पधार रही है और आपने चौकी चौकी बढ़िया बढ़िया जानकारियां दे छे। जहाँ कताई अमल में ला रहा अपन खेती और खेती से जुड़िया जो भी क्षेत्र जगह में अच्छो खासो लाभ प्राप्त कर सका चा। और लारा की लाराई जो प्रगतिशील किसान भाई छे वहाँ कताई भी अपन बुलावा चा, वहाँ सु अपन मला चा, वहाँ सु बातचीत करा चा और वहाँ सु जानकारियां लिया चा। तो ई क्रम में किसान भाई बने हो आज आपने साथ जो किसान साथी छे वो छे श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, केशोराय पाटन, जिला बूंदी। तो ओम प्रकाश जी, राम राम साहब।
2: राम राम साहब, राम राम।
1: आप जानो छो का जो खेती बाड़ी छे, कृषि छे, वह देश की अर्थव्यवस्था को एक मूल स्तंभ छे और आप भी यह चीज कर रहे छो, तो आपकी खेती में कशा रुचि जागी आप ही का बारे में बताओ।
2: खेती तो साम को पुराणो पुश्तैनी जो धंधो छे, मैं तो दादाजी पिताजी सभी खेती करता रहा जाए, तो बचपन से ही खेती में वकील लड़ाई चाहे, तो आज भी खेती में वही प्रकार से मैं को इंटरेस्ट बनी हुई है
1: जी। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने गर्मी की या गहरी जुताई करवा रखी है, तो एक पाचे काई लाभ छे इको एक बार हम बताओ आप।
2: गर्मी की गहरी जुताई तो मैं कहीं सभ्या नहीं करवो चाहिए
1: जी।
2: ईसो कहीं छे कि जो जमीन नई हो जाओ छे, एक तरीका से ऊपर की जमीन नीचे, नीचे की जमीन ऊपर हो जाओ छे।
1: हाँ हाँ।
2: तो अंदर ताई जमीन को जो 4-6 inches में ही अपनी खेती हो पाओ छे, फसल बहुत ज्यादा नीचे न हो पाओ, तो 4-6 inches तक की जो जमीन छे वो अगर अपन उलट पलट करता रहेगा तो वह पोलियो होगी। तो उसको कहेंगे पौधा के ताई फैल भाग के लिए पर्याप्त जो है जगह मिल पाओ छे, अन्यथा वह जमीन कहेंगे पत्थर की नहीं हो जाओ, भाटा की नहीं हो जाओ, तो उनमें फिर फसल की जड़ मतलब वो जो भी आप न्यूट्रिशन डालना चाहे उनको ताई वो ग्रहण न कर पाओ। इसलिए हर व्यक्ति के ताई या गर्मी की गहरी जुताई करवाओ चाहिए
1: जी।
2: और साथ ही जैसे मान लोग तो अब आग चाल और धान की फसल करा जा, तो 2-3 साल में जैसे अपना कंप्यूटर भी लगवार भी खेतानी लेवल करवाला चा, उससे पानी की पर्याप्त बचत हो चे और प्रत्येक पूरा खेत में इक्वल पानी रहे चे, मतलब तो उसको कहीं जगह फसल भी बढ़िया हो जाए, पानी की भी बचत हो जाए, तो यो काम भी सभी ही करवो चाहिए जब गर्मी के टाइम
1: जी। ये बात बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल। मैं देख रहा था, देखो ताना कंप्यूटर जहाँ जी लगवा रहा कीजिए, इसे आप लेवलिंग करा रहे जो बहुत ही बढ़िया बात है। और अब जो किसान भाई आप जो खरीफ फसल की तैयारी में लागेगा, तो खरीफ फसल की अपन बात करा, सबसे मुख्य तैयारी जो जो पहलो काम रहे वो मिट्टी तैयार करबो, तो इका बारे में आपका ये बताबो चाहूंगा। मिट्टी तैयार करती टर्म आप का ध्यान रखो, चुमागा किसान भाई का ध्यान रख।
2: देखो एक दिन बात मैंने बताई सही कि आप मोर पलाओ या गहरी जुताई चे ये कताई करवाओ,
1: बिल्कुल
2: के बाद में कंप्यूटर आप करवाओ, उनके बाद में अच्छे से फिर ये कताई बढ़िया जो चाहे काई जुताई करो, और हो सके तो जैसे

0: सुपर वगैरह छे या चीज डालो, और अगर लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में जानवर छे, खाद अगर गोबर की मौजूद छे तो वो सबसे उत्तम छे। ये अवधि में आबार जो छे का गोबर की खाद कताई डाल और एक दो बार हकाई जुताई कर, वो कताई वो बढ़िया महीन तरीका से अगर मिला दो जाओगे तो आगे फसल बहुत बढ़िया होगा, चांस रहेगा।
1: घनी बढ़िया बात छे। अब ओम जी, जैसे आप बता रहे छो धान की फसल आप करो जो, और इसके अलावा काई काई फसल भी करो जो?
0: देखो साहब, मैं कहते तो कमांड एरियो छे, चारों तरफ बोरिंगान को यो छई छे, तो मैं कहते तो जनरली जो छे धान की फसल हो छे। अब आर चार पांच दिन पहले बीज भी मंगाए जो माना 10 क्विंटल बीज ले रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी को बीज ले रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा तरीका से तैयार कर, और फिर आगे जो भी जो जून का पहला हफ्ता में इनकी पौध तैयार करेगा,
1: बिल्कुल
0: फिर उनको तय आगे चाल लगाए जाओ।
1: बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपने बीज की बात करी, तो माँ के जो विशेषज्ञ फावना फदारा चे वो भी कहे चे कि किसान भाइयों का ताई बीज को विशेष ध्यान रखनी चाहिए जे, हो सके जहाँ ताई प्रमाणित बीज को उपयोग करनी चाहिए जे, इका बारा में आपका एक पूछाऊंगा।
0: प्रमाणित बीज ही परचेज करा जाए माँ, उनको कहेंगे एक तो कम मात्रा में यूज करनी पड़ेगा, अगर आप लोकल बीज लगा तो ज्यादा मात्रा में डालनी पड़ेगा, जहाँ वह चीज 3 किलो डालनी चाहिए वहाँ वह चीज आप 5 किलो डालेगा तो वो कहेंगे जो पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो वो कचरा इकट्ठो करवा कोई मतलब कोई नहीं, ज्यादातर आदमियों का प्रमाणित बीज ही लेव चाहिए ताकि उसको अपन कथाएं अच्छी पौध मिल सके, और जब अच्छी पौध मिलेगी तो जो भी अपन खर्चो करोगे उसके अनुसार अपनी प्रोडक्शन में मिलेगा।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, प्रमाणित बीज अपन ले रहा गया, उसके बाद आपने जैसे बताई जो नर्सरी वगैरह भी तैयार करनी चाहिए, तो बुआई और नर्सरी ये दोनों बातें मैं अपन कई कई बातों को विशेष ध्यान रख सका चा?
0: बुआई करते टाइम पर भी कहीं से कहूँ की एक तो अच्छे से जो गहराई टाइप बुआई हो और वहाँ के पौधा से पौधा के बीच की जो दूरी है ना वारी वह भी पर्याप्त रहे, और जो बीच है उनको तो एक बार और छटनी कर ले वो चाहिए, अगर उनमें कोई जैसे चौबो एक बार रह चे, तो वो की अगर मात्रा चे, तो उनको तीन छटनी कर ले वो चाहिए। बहुत समा की साइड पर कहें गणा तो डायरेक्ट ही और दच जिसे बुआई कर दे, डायरेक्ट उराई कर दे धान की, और बहुत सा व्यक्ति से मान लोग तो कहें पहले पौध बनाऊंगा, पौध बनाऊंगा लगभग 15 से 20 दिन की, उनको तय कहेंगे जो अच्छे से सेवूंगा, अच्छे से उनकी सेवा करूंगा, जब वह 15 से 20 दिन की हो जाओगी उनके बाद में फिर उनको तय खेत में लगावा।
1: बिल्कुल। अच्छा ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया बात आप बता रहे छो। अब जैसे आपने पौध तैयार कर ली, उनके बाद अगलो कदम कहीं रहोगे, अगली कई बात आपको ध्यान रख मार्गदर्शन में?
0: पौध आपने 15 से 20 दिन की अगर होगी तो उनके बाद में धान का जो ये खेत है या मैं अपन बढ़िया तरीका से क्यारा वगैरह बना दिया या मैं पानी भर और गर्ड कराऊंगा, कद्दू करवाऊंगा, उसमें कद्दू भी खर्च है, कई बिहार साइड में ही काम छो कद्दू करबो खर्च, आपने गर्ड करबो खर्च, तो बढ़िया तरीका से 2 बार ट्रैक्टर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 2 बार ट्रैक्टर बढ़िया घूमोगो, तो उसको वो मिट्टी बिल्कुल दही की तरह ही में घुल जाओगी, मतलब उनके बाद में फिर जो भी ट्रेंड मजदूर से जो ऊँ टाइम पे भी गाना ट्रेंड जो मजदूर है जो कचरा करता है ऊँ टाइम पे भी टाल दे चाहिए गाड़ी वही पौध में ही छोड़ देगा कचरा करता है, तो वो ट्रेंड मजदूरों से लगवा चाहिए, और लगभग 4 से 6 इंच के आसपास की दूरी पे वो एक एक पौधो लगवा चाहिए ऊँ टाइम पर, यह सावधानी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओम प्रकाश जी, पौध आपने लाग गई, पौध लागबा के बाद जो अगलो काम रहे उसके बारे में आप बताओ?
0: पौध आपने तैयार होगी, पौध आपने अच्छे से लगा दी खेत में, एक बाद में बात आओ जो खेत में कचरो तो कोई नहीं, तो 2-4 दिन बाद में कि सारा खेत में घूम और देख वो चाहिए कहीं भी कोई कचरो जाए तो फिर कचरा की दवाई डाली जाओ, नहीं तो वो कचरा की ऐसी बेटर क्वालिटी की दवाई डाली जाओ, उसको कहेंगे वो पूरा खेत में एक लेयर सी बन जाओ, परत बन जाओ, उसे जो बारीक कचरो जो वही दब जाओ, वो कचरो अगर बाहर आ गयो एक बार तो फिर वो कचरा कहता है मारो बड़ो मुश्किल हो काम हो जाओ, सब जाओ जतरी दवाएं डालो वो कचरो न मर फिर बाद में, और हम काफी जो है लेबर को एक्सपेंसिव हो जाओ, इसलिए कचरा की जो दवाई है वो बहुत सावधानी से डाले जाओ और अच्छी क्वालिटी की डाले जाओ, उसके बाद में समय के साथ साथ फिर जैसे DAP वगैरह सुपर वगैरह यूरिया वगैरह ये खाद वगैरह डाला यही काम करा जाए।
1: बिल्कुल। अच्छा, धान में एक बहुत प्रमुख काम रच सिंचाई, तो सिंचाई का बारे में आप कहीं बताओ चाहूंगा।
0: सिंचाई का हिसाब ये तो धान तो पानी को कीड़ो छे
1: जी
0: नहीं, ये तो अपने तो मछली तो पानी में जिंदो
1: रहे,
0: पानी की तो आप बताएं बराबर उम्र व्यवस्था रखनी ही पड़ेगी। जहाँ कहीं से भी जमीन उगाड़ी होगी वहाँ कचरों को कचरों पर आप बताए मार न पाओगा, इसलिए टाइम टाइम

0: से खेत पर बरोबर घूमता रहो व्यक्ति और कहेगा जी जो पूरा खेत में चारों तरफ आपका खेत में जो पानी की उपस्थिति बनी रहे और पानी के टाइम भी समय समय पर बदल तो रहो चाहिए क्योंकि गर्मी में गाय पानी जो है बहुत भयंकर गर्म हो जाओ जी तो गर्म में गाय जो चूंकि शुरू में तो पौधो बच्चो ही रहे
1: जी।
0: तो ये मानो को बॉइल हो रहे ना पानी तो वो बॉइल पानी में वो पौधो न चल पाओ ये लिए पानी का ताई से जो बार बार मतलब बदलते रहो चाहिए क्यारा खाली कर दे चाहिए क्यारो खाली कर दो एक दिन छोड़ दो वो बाद में फिर वापस क्यारा भरो ये तरीका की सावधानी करो और पानी की व्यवस्था करवो चाहिए और ये चीज डिपेंड करे साहब का आपन को जो धान छे वो कसी क्वालिटी को जो क्वालिटी तुम्हारो तात्पर्य कसी किस्म को जो 15-09 हो जाए 17-18 हो जाए अपने बासमती की भी बहुत सारी क्वालिटी हो जाए तो वो पर्टिकुलर जो उनकी क्वालिटी है उनके अनुसार पानी की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दो। कुछ किस्म ऐसी जो कंपनी में भी आपको जाओगी कुछ किस्म ऐसी रह जाएगा मतलब वहां का ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ा जाए तो या तो व्यक्ति जिन्हें जो धान की जो क्वालिटी बो रखी है वो व्यक्ति उस चीज पर विशेष ध्यान रखना भाई आपने जो क्वालिटी जो ज्यादा पानी वाली है कम पानी वाली है क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी कम पानी वाली है और आप उसमें ज्यादा पानी डाल दे तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक है पौधा के लिए नुकसानदायक और अगर वह ज्यादा पानी वाली है कम डालेगा तो भी नुकसानदायक है तो ये चीज को विशेष रूप से जब आप बहुत सा किसान साहब यही ध्यान न रखे भाई मन किसे क्वालिटी बोई ची भूल जाओ चाहे विशेष रूप से ध्यान मैंने ये खेत में यह क्वालिटी बोई है तो ये के अनुसार ही उनको पानी की पूरी व्यवस्था करवो चाहिए उनके अनुसार ही खाद भी जैसे कुछ पर क्वालिटी ऐसी रहे जो कम खाद में ही भी काम बढ़िया प्रोडक्शन दे देते तो उन चीज को भी तो आपने खी क्वालिटी को बीज लियो जो ये चीज का आपको पूरी ध्यान रखो चाहिए और उनके अनुसार ही आप पानी और खाद को और अन्य जो भी रासायनिक चीजें आपने यूज करा जा वहाँ को सबको ध्यान रखना चाहिए उनका अकॉर्डिंगली अपने खेत में ये चीजें डालनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई आपने खाद की भी बताई और सिंचाई व्यवस्था की भी बताई कश्यामा का किसान भाई सिंचाई को प्रबंधन धान की फसल में कर सके छे। अब एक और जो सबसे बड़ी चुनौती किसान भाई का सामना हो छे आप भी उसको प्रबंधन करता होगा उच्च कीट रोग प्रबंधन या फिर और दूसरा रोग आपको प्रबंधन तो कसी कसी बीमारियां रोग बराग धान की फसल में आओ जो पहले तो या बताओ
0: धान की फसल में तो साफ शुरू से ही रोग तो कोई ना कोई चालतो ही रहे
1: जी
0: सफेद मच्छर छे कालो मच्छर छे नहीं ये समय के समय आती रहे छे नेक ब्लास्ट छे जी मैं कहेंगे जी जो जो पकाओ का टाइम पर गर्दन का वहां से वो एक ऐसे कीड़ो रहे जो गर्दन का वहां डंक मारे और पूरी जो आपकी बाल जो खत्म कर दे जब बीच में डंक लगा दो तो फिर वो बिल्कुल ऐसी निकलेगी जहाँ कोई चांदी की बाल निकलेगी जहाँ यानी मतलब बाल तो निकलेगी पर कोई जो है दाणो न भरे इनके लिए तो कहें समय समय पर आदमी बताए कीटनाशक जो भी लेकिन यह है कि जिसको जिस पर विश्वास है उसी हिसाब से अपने हिसाब से रासायनिक दवाइयां लेकर के वो टाइम टाइम पर करे अन्यथा आपने जितना माल डाला है नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे अपने यूरिया ज्यादा डाल देते हैं यूरिया डालने से क्या होता है कि पौधे में मिठास बनती है
1: जी।
0: मीठा होता है पौधा मीठा होने से क्या है कि उसमें कीड़ा जल्दी लगता है
1: अच्छा
0: तो कई बार क्या है कि किसी एक लाल लाल कलर की एक इल्ट होती है साहब जो जड़ों में लग जाती है आप ऊपर से कितना ही डालो पर वो जड़ में रहती है मतलब तो उसके लिए एक अलग ही वो दवाई है वो आप डालोगे तो वो क्या करती है पौधे को थोड़ा जहरीला कर देती है तो वो सारी जो इल्ट है वो आपको पानी में तैरती हुई नजर आएगी जैसे लाल लाल कलर की।
1: अच्छा
0: तो ये कुछ चीजें हैं जो समय समय पर अपन घूमते रहे देखते रहे पौधा देखते ही पता लग जाएगा आपको कि ये बीमार है या स्वस्थ है जो ट्रेंड व्यक्ति है वो तो एक बार जब चारों तरफ घूमता है तभी उसको पता लग जाता है कि भाई कितने मेरी मतलब किस कॉर्नर पर किस प्रकार की बीमारी चल रही है तो उसी के अनुसार फिर वो समय के साथ उस पर दवाई वगैरह डाल करके उसकी सुरक्षा कर लेता।
1: ओम प्रकाश जी बहुत ही बढ़िया बात आप बता रहे छो। अब धान की अपन बात करा तो धान में भंडारण भी एक बड़ो अहम पड़ाव छे मुख्य पड़ाव छे तो भंडारण का विषय में आपका ही बता बचाओ कैसे आप करो जो
0: हाँ सर फसल पदाया के बाद में या पकवा के बाद में उनको तुरंत तो मार्केट में बेचो न जा सके क्योंकि अब अपनो खर्चो करा जाए तो थोड़ा भाव भी देखनी पड़े बार कहीं भाव चल रहे कहीं नहीं चल रहे तो हिसाब से साहब अपन ने तो यो 100x100 को टीन सेट लगवा रखियो जे अपन तो जैसे ही माल कहीं गए जो कटे जे तो इम एक अंदर ढेर कर दा जा ताकि जैसे अब ये टाइम पर कहीं बारिश

0: कभी-कभी बारिश भी हो जाओ जी, तो बारिश हो जाओ तो उसको सुरक्षा हो जाओ जो मान तुम्हारे का हिसाब से भंडारण की व्यवस्था कर रखी है ताकि माल एक बार खेत में से निकल गयो तो अपना घर पर सुरक्षित हो सके
1: जी। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ओम प्रकाश जी, अब अंत में चालता चालता मैं का करसान बयान ही आप संदेश का तौर पर काई खबर चाहूंगा।
0: संदेश के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के युग में बच्चे सभी कोई नौकरी के पीछे भग रहा है, यही है कि सबको जो है खेती पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी छे जिनके पास भी छे जमीन जाकर वो भी बचरी है वही सब पूरा जोर लगा करके पूरा दिमाग लगा करके पूरी टेक्नोलॉजी लगा रहे खेती पर, मतलब एक पूर्ण प्रबंधन के तहत खेती के अंदर उतरे अगर आज को युवा तो ऐसा नहीं है, खेती में भी व्यक्ति जो है बढ़िया कमा सकता है और कुमा भी है। जैसे आप कोई आस पास का नरा मनक से जहाँ गोडक थोड़ी जमीन से फिर भी वन बहुत अच्छा तरीका से जो आज को जो भी आधुनिक मटेरियल से जो भी सुविधाएं से उन सबको उपयोग में लेकर के खेती में अच्छा जो है उन्होंने किया भी है तो ज्यादा से ज्यादा वहाँ लोगों ने फसल भी प्राप्त करी है और समाज में अपना अच्छो स्टेटस भी बनायो छे। तो जिके पास भी जमीन छे वहाँ लोगों ने अदर की अपेक्षा खेती में पूरा जोर दे और आधुनिकता के साथ खेती के तय करवो चाहिए तो खेती से आम जो किसान छे वो भी मजबूत होगो और अपना देश भी मजबूत होगो, साहब किसान मजबूत होगो तो देश भी मजबूत होगा, अपना अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
1: श्री ओम प्रकाश जी शर्मा केशराई पाटन जिला बूंदी, आप मका कार्यक्रम से जुड़िया और मका करसान भाई बनिया ने इतनी बढ़िया बढ़िया छोकी छोकी जानकारियां दी, उकले का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब। राम राम, राम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाई बने हो प्रगतिशील कृषक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने बहुत बढ़िया जानकारी आपन का ताई दी छ। आपन ऊपर जरूर अमल करा और बहुत बढ़िया वानवा का अनुभव बांटा छ अपना साथ। किसान भाई बने हो PM किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना छ जिके तहत पात्र किसान परिवार आनी हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाओ छ। यह राशि हर 4 महीना में 2000 रुपए की 3 समान किस्ता में सीधा किसाना का बैंक खाता में भेजी जाओ छ। इको उद्देश्य किसाना का खेती से जुड़िया खर्चा जैसा खाद बीज सिंचाई कर लेकर सायरो लगावो छ। भाई बहनों PM किसान सम्मान निधि की पात्रता की अगर बात करा तो वह सभी किसान भाई बहन जिनके पास खेती की जमीन छ वह ई योजना को लाभ ले सके छ। किसान भाई बनिया अगर नयो पंजीकरण करनो छ तो अपन आधिकारिक पोर्टल पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करनो छ। जरूरी कागजात जैसे आधार खसरा खतौनी और बैंक पासबुक की जानकारी भरनी छ। सत्यापन होबा के बाद योजना को लाभ अपन का ताई मिलबो शुरू हो जाओगो। किसान भाई बनिया विपणन वर्ष 2026-27 खरीफ फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य छ वह भी अपन जान लिया छा। धान सामान्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य छ 2441 रुपया, धान ग्रेड ए 2461 रुपया, ज्वार हाइब्रिड 4023 रुपया, ज्वार मालदंडी 4073 रुपया, बाजरो 2900 रुपया, रागी 5205 रुपया, मक्का 2410 रुपया, अरहर 8450 रुपया, मूंग 8780 रुपया, उड़द 8200 रुपया, मूंगफली 7517 रुपया, सूरजमुखी का बीज 8343 रुपया, पेड़ सोयाबीन 5708 रुपया, तल्ली 10346 रुपया, नाइजर सीड 10052 रुपया, कपास मध्यम रेशा की तो 8267 रुपया और कपास लंबा रेशा की 8667 रुपया प्रति कुंटल। किसान भाई बहनों अब कार्यक्रम संबंधी सूचना भी सुन लिया जा। भाई बहनों खाल 29 मई शुक्रवार का दिन

श्याम के 7 बजे आर के वी वाई ए आर एस द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन चौपाल को विषय रहेगा जैविक खेती के लाभ और जैविक खेती कैसे करें। ई विषय पर अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप श्याम के 7 बजे से 7:30 बजे का बीच में चौपाल में सीधा फोन कर प्रश्न पूछ सको चो और समाधान पा सको चो। माँ का टेलीफोन नंबर वही जाने पहचाण्या 0744-294-1142। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लियो 0744-294-1142। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। भाई बहनों चौपाल कार्यक्रम में देखो बाता चीता छे जानकारियां छे तो उके साथ साथ मनोरंजन भी छे। तो सुना छा अमावस नात और साथियां को गायो मीठो सो लोक भजन।

वाह जी वाह करसान भाई बण्यो, लोक भजन का तो देखो आनंद ही आ गया। और अब देखो चालता चालता अपन मौसम की जानकारी भी ले लिया छा। करसान भाई बण्यो, आज 28 मई की अपन बात करा तो तापमान रोच अधिकतम 46 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रहबा की संभावना छ। 26 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से बाढ़ चाल बागी संभावना छ और 49% नमी रहबा की संभावना छ। खाल 29 मई की बात करा तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहबा की संभावना।

होना छे। 29 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से बाढ़ चाल बाकी संभावना छे और 61% नमी रह बाकी भी संभावना छे। करसान भाई बहनियाओ 30 मई सु अगला कुछ दना ताई कुछ स्थान आप बरखा पड़ बाकी भी संभावना बनी हुई छे। और ई मौसम की जानकारी के साथ ही देखो चौपाल कार्यक्रम को टर्म भी पूरा हो गयो। तो दियो आपका धनंजय भाई के ताई आज्ञा चालाचा फिर मिलेंगे। राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत माटी के स्वर, जिसमें पहला नगमा आइए सुनते हैं लोकगीत चिरंजी लाल तवर जी का।

माटी के स्वर राजस्थानी लोक संगीत का आप आनंद ले रहे हैं। सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है। श्रोताओं, अगला लोकगीत आइए सुनते हैं सीमा मिश्रा की आवाज में।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। कार्यक्रम आपकी सेहत में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 प्रातः 8:15 बजे से 9 बजे तक आप सुनेंगे श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार। विषय पर जानकारी हमारे अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार जांगिर देंगे। कार्यक्रम में आप विषय पर आधारित अपने प्रश्न भी कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर आप नोट कर लीजिए 2941142। एक बार फिर सुन लीजिए 2941142। अवश्य सुनेगा कार्यक्रम आपकी सेहत शनिवार प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। आइए अगले लोकगीत की तरफ चलते हैं और अगला लोकगीत सीमा मिश्रा की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे माटी के स्वर राजस्थानी लोक संगीत के। FM 102 103.6 MHz और

मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का पहला नगमा उमराव जान फिल्म का, आशा भोसले की आवाज, सैयार के शब्द और खयाम के

चित्रपट संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है। तो चलिए अब इश्क के रंग में डूबते हैं और सुनते हैं अगला खूबसूरत नगमा, जो कि है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज और किशोर कुमार भी उनका साथ देते हुए, साथ में शब्द दिए हैं अनजान ने और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए साथ मिलकर आनंद लेते हैं।

क्या बात है, खूबसूरत सा नगमा अभी आपने सुना। और अब लोक संगीत में अगला नगमा आप सुनने वाले हैं शराबी फिल्म का। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज यहाँ पे होगी, अनजान के शब्द होंगे और संगीत सजाया है बप्पी लहरी ने।

0: पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद ले रहे हैं आप, आइए अब सुनते हैं जुदाई फिल्म का नगमा अलका याग्निक अभिजीत की आवाज़ में, शब्द समीर के और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का यह नगमा, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, शब्द असद के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं यस बॉस फिल्म का नगमा अभिजीत अलका याग्निक की आवाज में, शब्द जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आप आनंद ले रहे हैं। आइए अब चित्रपट संगीत में अगले नगमे की तरफ बढ़ते हैं। कयामत से कयामत फिल्म का, और इसे गाया है उदित नारायण ने, शब्द है मजरूर सुल्तानपुरी के और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में समाचार संध्या दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से

0: से अधिक राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहाँ वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
3: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब वक्त है फिल्म संगीत बातों ही बातों में। इसमें हम फिल्मी गाने सुनेंगे और जो फिल्मी गाने होंगे आप जानते ही हैं कि यहाँ पे आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट गाने चलाए जाएंगे और कई सारे नगमे ऐसे होते हैं फिल्मों के जो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे एहसास बन जाते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की

कभी कोई गाना मुस्कुरा देता है खुद ही खुद में, तो कभी किसी की याद दिला देता है। लेकिन कुछ गानों की बात ही अलग होती है और कुछ चेहरे और कुछ नैन सीधे दिल पर असर कर जाते हैं। और वही एहसास ये जो अभी अगला जो पहला गाना आने वाला है उसमें आपको सुनाई देगा। तो इस एहसास को बनाए रखने के लिए आइए अब सुनते हैं दबंग फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा।

संगीत बातों बातों में। दोस्तों, जब जश्न शब्द सुनते हैं ना तो मन में एक अलग ही खुशी आ जाती है। अच्छा, आप बताओ, आपने आखिरी बार जश्न कब मनाया था? या तो किसी अपने के आने का जश्न मनाया होगा, तो कभी किसी खूबसूरत एहसास का। और आपको पता ही है, जश्न या तो होली दिवाली तभी मनाया जाता है, लेकिन कुछ जश्न ऐसे होते हैं जब दिल खुश होता है तब भी मना लिया जाता है। और बॉलीवुड ने भी ऐसे जश्न को गानों में बहुत खूबसूरती से सजाया है। और अगला गाना जिसमें प्यार, सुकून, जश्न और खूबसूरत एहसास, ये सारे एक साथ मिलेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत से जश्न भरे माहौल को और खूबसूरत बनाते हैं। और अब सुनते हैं जश्न बहारा।

फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप सुरभि मेहता की आवाज में। अगला नगमा जो आ रहा है वो शायद जितने भी लोग सुन रहे हैं उनमें से कईयों का बहुत फेवरेट होगा, जिसमें बताया गया है कि जीवन में कभी ना कभी कहीं से निकल जाना बहुत बेहतर होता है, जहां आपको किसी चीज की जल्दी नहीं होती, ना कोई टेंशन होती है, बस रास्ते हो, मौसम हो और कुछ अच्छे गाने हो। अगर आपको घूमने का बहुत शौक है तो ये गाना आपके लिए। ये जवानी है दीवानी का ये नगमा।

दोस्तों, इस वक्त गर्मी ने तो सच में सबका हाल बेहाल कर रखा है। ऊपर से नौतपा चल रहा है तो हर किसी को बस एक ही चीज का इंतजार है, वो है बारिश। हाँ, आपके मन में भी यही आ रहा होगा ना कि बारिश कब आएगी। बारिश आने में तो वक्त है जहाँ आपको ठंडी हवाएं, मिट्टी की खुशबू, चाय की चुस्कियाँ और प्यारे प्यारे गाने भी मिलेंगे। तो वो बारिश का नाम सुनते ही सबसे पहला गाना जो याद आता है वो अब हम सुनेंगे, जिसमें चाय, खिड़की, ठंडी हवा और बॉलीवुड सब होगा। तो चलिए अब मौसम को थोड़ा सा म्यूजिकल बनाते हैं और सुनते हैं अगला नगमा, बारिश वाला नगमा।

खूबसूरत सा नगमा आपने अभी सुना हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का। तो चलिए अब फिल्म संगीत बातों बातों में आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो कि जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं, जिनके आने के बाद छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत लगने लगती है, बिना वजह मुस्कुराना, हंसना और कहीं ना कहीं खो जाना, हर गाने में एक चेहरा नजर आ जाना। तो चलिए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा।

बातों ही बातों में हमने फिल्म संगीत का आधा सफर तो तय कर लिया है और अब अगले नगमे की तरफ हम जाएं से पहले बाहर मौसम भले ही कितना ही गर्म क्यों ना हो लेकिन यहाँ हमारे स्टूडियो में और स्टूडियो में जो भी गाने हम आपके लिए लगा रहे हैं उसमें ठंडक जरूर है। तो गर्मी के मौसम में ठंडी हवा और सुकून भरे गाने अभी आप आकाशवाणी के चंबल चैनल पर सुन रहे हैं। फिलहाल अभी एक थोड़ा सा पुराना गाना लेकिन सभी के दिल के करीब। आपको पता ही है कि जो पुराने नगमे होते हैं ज़्यादा पुराना नहीं बट हाँ जब हम 2010 और 11 की बात करते हैं तब के नगमे जब जो आशिक होते थे किस तरीके से वो गाना गाते थे और कैसे वो फिल्माया गया था। तो आइए

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, रात की अपनी खामोशी होती है और उस खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि अपनी रोशनी फैला देते हैं। एक और नगमा आपकी तरफ गैंगस्टर फिल्म का, जिसे के ने गाया है। म्यूजिक इसमें प्रीतम ने दिया है और इसमें शब्द हैं सईद कादरी के।

सफर में धूप तो होगी, हवा भी साथ चलेगी, जो खुद से मिलना सीख गया उसकी हर राह खुलेगी। आज़ादी सिर्फ पंखों से नहीं मिलती जनाब, कभी कभी अपने डर छोड़ने से भी उड़ान मिलती है।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत बातों ही बातों में। FM 102.3 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है। अब आप विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

पेशे खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसाना, ये हकीकत है। दो घड़ी मिल बैठे, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबुए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नजारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप। बधाई।

0: उनकी वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष

0: के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।